एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 8:55 होने को है। आज रविवार है, दिनांक 23 अगस्त 2026। सुबह के 8:55 होने को है। अब आरंभ होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:57 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी कि 9 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जयपुर केंद्र से। सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस। आज सुबह भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे हरिओम शरण के गाए कुछ भक्ति रचनाएं। कार्यक्रम है वंदना, समय रहेगा सुबह 9:20। झलकी, ये कार्यक्रम सुबह 9:40 पर प्रसारित किया जाएगा, जिसका टाइटल है मरने के बाद गाने पुराने जमाने के। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। और गाने नए तराने के, ये कार्यक्रम आज सुबह 10:30 हमारे केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आप सुन पाएंगे। और 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से, और युवा दिलों की धड़कन युवा वाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम को 5 बजे। छोटे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालवाड़ी समय रहेगा 5:30 बजे, और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम को 6:05 पे होगा। माटी के सुबह कार्यक्रम होगा 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी 7:00 और फिल्मी गीतों का कार्यक्रम 7:30 होगा। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर कार्यक्रम हेलो गोरबंद 8:00 और सुगम संगीत कार्यक्रम 9:00 और 9:15 आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। सुबह के 9 बजने को है, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार जयपुर केंद्र से।
1: समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज, इस वर्ष की थीम है विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की। और रक्षाबंधन पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ, और अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिन वर्ष 2023 में चंद्रयान 3 मिशन के तहत विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की इस उपलब्धि पर हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी।

0: 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा।
1: इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। इस अवसर पर इसरो की ओर से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री शर्मा ने कहा कि देश आज अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में गौरवशाली आयाम स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहा है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संबंधित जिलों में निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही है। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी काना राम ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में बाड़मेर में कल विभिन्न स्कूलों में जागरूक मतदाता शपथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। भरतपुर के शास्त्री पार्क में वरिष्ठ नागरिकों ने लोगों को मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान और मध्य प्रदेश को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी भोपाल रामगंज मंडी नई रेल लाइन परियोजना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। परियोजना के तहत करीब 25 किलोमीटर लंबे इस नवनिर्मित ब्यावरा राजगढ़ सोनकच्छ रेलखंड पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफलतापूर्वक स्पीड ट्रायल किया गया। 276 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 27 रेलवे स्टेशन प्रस्तावित हैं। उधर सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी जंक्शन से दौसा रेल लाइन पर विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में कल इस खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन से सफलतापूर्वक ट्रायल संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि रेल विद्युतीकरण के बाद क्षेत्र के यात्रियों और व्यापारियों को लाभ मिल सकेगा।
2: 1996-97 में स्वीकृत परियोजना पर 16 मार्च को पहली यात्री ट्रेन आरंभ होने के बाद रेल विद्युतीकरण पूरा कर डीजल इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक इंजन चलने से खर्च आधा रह जाएगा तथा क्षेत्र का दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, हरियाणा, इंदौर, भोपाल, नागपुर और दुर्ग जैसे प्रमुख नगरों से सीधा जुड़ाव होने से यात्रियों और माल भाड़े में व्यापारियों को बेहतर लाभ मिल सकेगा। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
1: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज विशाखापत्तनम में होगी। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में परस्पर सहयोग मजबूत करने के लिए एकजुट होंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि बैठक में चर्चा करेंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने कल प्रदेश भर में सघन निरीक्षण कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान 60 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के 101 नमूने इकट्ठे किए गए। राजधानी जयपुर में करीब 7000 लीटर मिलावटी मूंगफली का तेल सीज किया गया। वहीं विभिन्न जिलों में लगभग 1200 किलो दूषित और अमानक खाद्य सामग्री नष्ट की गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने बताया कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए

0: आज अवकाश के दिन रविवार को भी कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। झालावाड़, बारा, बूंदी, डीडवाना और उदयपुर सहित कई मंडलों में विशेष काउंटर संचालित होंगे। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह कल नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना चाहिए। वे भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में आयोजित IIMA हेल्थ केयर समिट 2026 को संबोधित कर रही थी। स्वास्थ्य सेवा में AI को बढ़ावा देना विषय पर हुई इस समिट में उन्होंने कहा कि AI से दवाओं की खोज में तेजी लाई जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पायलट परियोजनाओं से जनसंख्या स्तर पर कार्यवाहन की ओर बढ़ने के लिए सरकार, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य संस्थानों, स्टार्टअप और उद्योग के बीच अधिक सहयोग का आह्वान किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में उर्वरक विभाग के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता संतोषजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निरंतर निर्बाध आपूर्ति और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से कोलंबो में शुरू होगा। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से ये मैच शुरू होगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आज। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर, नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी। शुद्ध आहार मिलावट परवार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने प्रदेश भर में सघन निरीक्षण और कार्रवाई की तथा राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज रविवार को कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 MHz पर। सुबह के 9:21 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं वंदना कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए हरिओम सरन की गई कुछ भक्ति रचनाएं, और यह है कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना। कलाकार हैं हरिओम सरन।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वैद्य

विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया, आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जसवंतगढ़।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदन। इस कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनिए हरिओम शरण की गई कुछ भक्ति रचनाएं सुन रहे हैं। यह है कार्यक्रम की दूसरी भक्ति रचना, आवाज है हरिओम शरण।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए, आप सुनिए हरिओम शरण की गाई यह कार्यक्रम की आखिरी भक्ति रचना।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम झलकी। टाइटल है मरने के बाद, तो आइए सुनते हैं ये एक छोटी सी झलकी मरने के बाद।
1: अरे मैंने कहा सोहन की माँ कहाँ हो?
2: हाय क्यों चिल्ला रहे हो? रसोई में हूँ, रसोई में। कोई काम भी करने दोगे या चिल्लाते ही जाओगे?
1: ये तो तुम कब से कह रही हो कि तुम रसोई में हो, लेकिन खाना तो अभी तुमने दिया ही नहीं और यहाँ भूख जोरों से लग रही।
2: हाय हाय, तुम नौकरी से क्या रिटायर हुए? तुम तो दिमाग से भी रिटायर हो गए। शाम को 6 बजते ही तुम्हें खाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते।
1: देखो देखो सोहन की माँ, जब नौकरी में था ना तब भी यही आदत थी और अब भी यही आदत है कि मैं कोई काम पेंडिंग में नहीं छोड़ता। हाँ, और फिर कुछ ख्याल भी तो करो, मैं रिटायर्ड सही, बूढ़ा सही, लेकिन हूँ तो तुम्हारा पति देव। तुम्हारा फर्ज है, तुम मेरी सेवा किया करो।
2: अच्छा, तो मैं तुम्हारी सेवा करूँ?
1: यू आर मोस्ट वेलकम।

0: तुम्हारे लिए ऑमलेट बनाऊं?
1: ऑमलेट ले आओ एक दो प्लेट। क्या
0: तुम्हारे लिए चाट बनाऊं?
1: चाट वाई नॉट, जरूर जरूर जरूर।
0: ये मूंग और मसूर की दाल
1: है? आमलेट और चाट के साथ मसूर की दाल, यानी कि सबकी सब चीजें नमकीन, मीठा कुछ भी नहीं।
0: तुम्हें शर्म नहीं आती? सारा दिन बेकार खाट पर पड़े ऐसे रहते हो, न काम न धाम, और फिर हर वक्त तुम्हें कुछ खाने को जरूर चाहिए।
1: हे भगवान, ऐसी भी कोई औरत होगी इस दुनिया में जो अपने पति को खाने पीने से टोके?
0: आए हाय, मैं कब रोकती हूँ तुम्हें खाने से?
1: हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, या तो मेरे ले ले प्राण, और या
0: हाँ बोलो आगे बोलो, और या किसके ले ले प्राण?
1: तुम इस तरह गुस्से में बोल रही हो सोहन की माँ, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। प्रार्थना क्या मैं हाँ करूँ? हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, या तो मेरे ले ले प्राण, और या
0: और या
1: और या और या और या भी मेरे ही ले ले प्राण। तो अब तो खुश हो? हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, कोई और चॉइस नहीं है शक्तिमान, अब मेरे ही ले ले प्राण।
2: और उसी दिन रात को जब मंगतराम जी सो रहे थे, तो किसी ने आकर झंझोड़ा।
1: तुम कौन हो भाई, मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ, छोड़ दो मेरा हाथ।
3: तुम बेकार हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करो, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। प्राणी?
1: प्राणी कौन प्राणी भाई? मेरा नाम बिगाड़ने की कोशिश मत करो, मैं हूँ मंगत राम उर्फ मंगता, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर।
3: अब तुम न मंगत राम हो और न मंगता, अब तुम सिर्फ प्राणी हो। प्राणी,
1: आपकी तारीफ।
3: मैं यमराज का एजेंट हूँ।
1: यमराज का एजेंट? कुछ समझ में नहीं आया, बैंक एजेंट, कमीशन एजेंट, मैनेजिंग एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट, ट्रैवल एजेंट सुन रखे थे, लेकिन ये यमराज का एजेंट तो पहली बार सुना है।
3: मैं यमदूत हूँ, यमदूत।
1: क्या कहा?
3: यमदूत, अब तुम मर चुके हो और मैं तुम्हें यमराज के पास ले जा रहा
1: हूँ। मैं मर चुका हूँ, लेकिन किस खुशी में भाई साहब? मेरा मतलब, मेरा कसूर क्या है?
3: भूल गए भोले प्राणी, कल शाम को तुम खुद ही भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कृपा निधान कर कल्याण, ले ले मेरे प्राण, और अब पूछते हो कि मेरा कसूर क्या है?
1: वो प्रार्थना वो प्रार्थना मैं भगवान से थोड़ी कर रहा था, वो तो मैं अपनी पत्नी को डरा रहा था।
3: लेकिन भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली।
1: जो बात मैं पत्नी से कर रहा था वो भगवान ने सुन ली, यानी कि रॉन्ग नंबर मिल गया।
3: कल शाम को पूरे 6 बजे तुमने भगवान से प्रार्थना की कि ले लो मेरे प्राण, और 6:01 पर मैंने तुम्हारे पास पहुंचकर तुम्हारे प्राण निकाल लिए।
1: कमाल है, बड़ी प्रॉम्प्ट सर्विस है। मेरी एक बात मानो यमदूत जी, तुम यमराज की नौकरी छोड़कर किसी फायर ब्रिगेड में नौकरी कर लो, इससे जनता का भी भला हो जाएगा। इधर आग लगी, उधर तुम फायर ब्रिगेड लेकर पहुंच।
3: प्राणी, हाथ छोड़ाने की कोशिश मत करो, अब तुम भूल जाओ उस दुनिया को।
1: मैं कैसे भूल जाऊं उस दुनिया को जहां मेरी पत्नी रहती है? जब तुम मुझे लेकर चले थे उस वक्त वो मेरे लिए पराठे बना रही थी। वो बेचारी वहां बैठी मेरा इंतजार कर रही होगी, जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा वो भी खाना नहीं खाएगी।
3: तुम भी अजीब तरह के इंसान हो, शरीर छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा खाने का लालच नहीं छूटा।
1: मिस्टर यमदूत, काश के तुमने मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाया होता। हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, छोटी छोटी मुलायम मुलायम भिंडियों की सब्जी, काले काले चमकदार बैंगनों का भरता, उड़द की दाल और उसमें देसी घी का तड़का।
3: लालची इंसान, चलो मेरे साथ, अब तुम उस दुनिया से बहुत दूर आ चुके हो।
1: महाराज, इतना जुल्म तो न करो मेरे साथ।
3: तुमने खुद ही तो प्रार्थना की थी के ले लो मेरे प्राण।
1: अरे भाई, कह तो दिया मैंने, मैं तो अपनी पत्नी से मजाक कर रहा था। तुम आसमान में रहने वाले क्या जानो, हम आदमियों को अपनी पत्नियों को डराने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब मैं यकीन दिलाता हूँ महाराज, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कान पकड़ता हूँ, अब मैं मरने का कभी भी नाम नहीं लूंगा। एक बार मुझे वापिस ले चलो उस दुनिया में, मेरी पत्नी, मेरा लड़का, मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब मेरे लिए रो रहे हैं।

0: लेकिन अब तुम्हारे वापस जाने का कोई फायदा नहीं।
1: क्यों महाराज?
0: क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे शरीर का संस्कार कर चुके हैं। अगर तुम फिर शरीर धारण करके उस दुनिया में वापस पहुंचोगे तो लोग तुम्हें भूत समझेंगे।
1: भूत? लेकिन कोई तो उपाय सोचिए महाराज।
0: सिर्फ एक तरीका हो सकता है प्राणी।
1: क्या?
0: पहले सिर्फ तुम्हारी आत्मा वहां जाएगी, यानी कि लोग तुम्हारी बात तो सुन सकेंगे लेकिन वो तुम्हें देख नहीं सकेंगे। अब तुम अपनी आवाज से आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को यकीन दिला दोगे कि तुम मरे नहीं जिंदा हो तो फिर तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा।
1: मुझे मंजूर है महाराज, मुझे ले चलो वापस उस दुनिया में। वो मेरी आवाज सुनेंगे तो मारे खुशी के नाच उठेंगे।
0: तो चलो वापस उस दुनिया में। देखो प्राणी, तुम अब इस दुनिया में वापस आ गए।
1: वही मोहल्ला।
0: अब तुम प्राणी नहीं हो, अब तुम फिर मंगत राम उर्फ मंगता हो। देखो ये लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी याद में मातमी जलसा कर रहे हैं।
1: जी हाँ महाराज। और वो देखिए, वो मेरा जिगरी दोस्त रुलाया राम भाषण देने के लिए खड़ा हो रहा है।
2: भाइयों और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम लाला मंगत राम की मौत पर शोक प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लाला मंगत राम का रोता हुआ चेहरा जब भी हमारे सामने आता है हमें हंसी आ जाती है। रुकिए सावान, रुकिए, जो तालियां आपने बजाई हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, मैं गलत बोल गया। अब मेरा मतलब है कि जब लाला मंगत राम का हंसता हुआ चेहरा हमारे सामने आता है तो हमें रोना आ जाता है। तुम हमको रोते के लिए छोड़ गए मंगत राम।
1: महाराज, महाराज मेरा ख्याल है मैं अपने आप को जाहिर कर दूं कि मैं जिंदा हूँ।
0: चूको मत मंगत राम, यही मौका है।
2: अपने दोस्त रुलिया राम को और न रुलाओ मंगत राम। तुम कहाँ हो मंगत राम?
1: मैं यहाँ हूँ रुलाया राम।
3: है? ये कौन है बेवकूफ जो बीच में बोल रहा है?
2: हाँ तो मैं कह रहा था लाला मंगत राम की जितनी भी तारीफ की जाए ज्यादा, मेरा मतलब है कम है। सूझबूझ वाले इंसान थे वो, मौका शनास थे, वो जानते थे कि किस वक्त कौन सी बात कहनी
1: है। राम,
3: अरे ये कौन है बदतमीज तो फिर बीच में बोल रहा है?
1: मैं मंगत राम बोल रहा हूँ।
3: मंगत राम?
1: हाँ रुलाया राम, जिसकी याद में तुम ये मातमी जलसा कर रहा हो, जिससे तुमने 500 रुपए उधार लिए तो और अभी तक नहीं लौटा।
3: 500 रुपए? तुम उस मंगत राम की बात कर रहे हो जिसको जिसका संस्कार हम अपने हाथों से करके आए हैं? हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, खामोश हो जाओ। हाँ तो साहिबान, काश के वो आज जिंदा होते और अपनी आंखों से देखते कि हम किस शान से उनका मातमी जलसा कर रहे हैं।
1: रुलाया राम, अगर तुम चाहो तो मैं सचमुच तुम्हारे सामने आ सकता हूँ।
3: हाँ हाँ, तुम सामने आओ तो सही, एक बार तुम मेरे हाथ में आ गए तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली बराबर कर दूंगा। कम वक्त मातमी जलसे में खलल डालता है।
0: मंगत राम अब चलो यहाँ से, तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानेगा।
1: ओ, अच्छा, मुझे घर ले चलो महाराज। वो देखिए महाराज, मेरा लड़का सोहन मेरी याद में किस तरह रो रहा है।
4: सोहन, तुम अपने बापू की याद में इस तरह कब तक रोते रहोगे?
1: जब तक घर के और लोग रो रहे हैं।
4: सोहन, तुम्हें अपने बापू के मरने का बहुत दुख है।
1: बहुत दुख है।
4: तुम्हें याद है सोहन, तुम्हारा बापू हमारी मोहब्बत की राह में रोड़े अटकाया करता था।
1: याद है।
4: और तुम्हारा बापू कितना लालची था, मेरे माँ बाप से कहता था अगर दहेज में 10,000 रुपया नकद दोगे तो शादी होगी।
1: रीता, मैं बाकी इस बात से बहुत परेशान था।
4: चलो छुट्टी हुई, अब तो हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम चैन से शादी कर सकेंगे।
1: रीता, मेरा हाथ मत पकड़ो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
0: सोहन।
1: कौन है?
4: कोई भी तो नहीं।
1: ऐसा लगता है जैसे किसी की आवाज आ रही है।
4: यहाँ तो कोई नहीं, तुम्हारा वहम है। हाँ तो अब बताओ सोहन, तुम कब शादी करोगे मेरे साथ?
1: बस अब क्या देर है रीता, चट मंगनी पट गया।
5: जब जब मुझे बाप याद आता है

0: तू किससे झगड़ रहे थे?
1: ना जाने माँ यहाँ कौन है, सामने भी नहीं आता और काम का बोलता चला जा रहा है। मैं बापू की याद में दुखी हूँ और ये मेरा मजाक उड़ा रहा है।
2: सोहन की माँ
3: पिटे मुँह,
0: हमारे घर में मातम हो रहा है और तुम हे हे कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन हो तुम?
4: मैं हूँ, मेरा मतलब है मैं हूँ मंगता। मंगता?
0: मंगता?
4: हाँ सोहन।
0: अरे ये कोई वक्त है मांगने का?
4: सोहन की माँ मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति, मैं तुम्हारा पति हूँ, पति पति, पहचानो पहचानो मुझे, पहचानो।
0: क्या जता रहे हो कि तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा पति हूँ? अरे वो तो तुम पिछले 40 साल से चला रहे हो कि तुम मेरे पति हो। कोई नई बात बताओ।
4: हाँ मैं तुम्हें नई बात बताता हूँ। मैंने एक बड़ा भयानक सपना देखा। सपने में क्या देखता हूँ कि मैं मर चुका हूँ और यमदूत मुझे यमराज के पास ले जा रहे हैं।
0: सच? फिर क्या हुआ?
4: फिर झुमका गिरा रहे। नहीं नहीं, मेरे कहने सुनने पर मुझे उस दुनिया में गिरा गया।
0: फिर
4: मैंने देखा कि मरने के बाद लोग किस तरह मुंह फेर लेते हैं। मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना, भुलाया राम ने नहीं पहचाना, सोहन ने नहीं पहचाना, यहाँ कि तुमने भी नहीं पहचाना। मैंने देख लिया है मरने के बाद क्या होता है। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा।
0: आए हाय, मैं पूछती हूँ, अगर तुमने कभी मरना ही नहीं था तो 20,000 का बीमा क्यों कराया था?
4: तो क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं मर जाऊं? हे भगवान, हे कृपा निधान कर कल्याण, अब ऐसे ले ले प्राण के वापिस आने का कभी ना लू ना। हे भगवान कृपा निदान कर ले कल्याण, ले ले। अगर उस यमदूत ने सुन लिया तो ले जाएगा फिर मेरे प्राण। नहीं नहीं नहीं नहीं, हे भाग्यवान, सुबह हो गई, ले आ नाश्ता, ले आ पकवान।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झलकी। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मरने के बाद। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से प्रस्तुत कर रहे थे। सुबह के 9:54 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एक सुगम संगीत में पंकज उदास की गाई यह गजल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झलकियां। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजे हैं। पेश कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म राम लखन के इस दो गाने के साथ। आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ अनुराधा और नितिन मुकेश की है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए फिल्म खुदा गवाह में लता मंगेशकर को। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए आप सुनिए फिल्म हम का ये दो गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज और शोभना जोशी की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने पुराने जमाने के। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए तराने नए। इस कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का एक दो गाना। आवाज़ें चिन्मयी सिपदा और गोपी सुंदर की है। गीतकार अमिताभ बच्चन भट्टाचार्य और संगीतकार विशाल शेखर हैं।

लीजिए, अब सुनिए फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी का ये गीत। आवाज आतिफ असलम और अरिशा चिनॉय की है। गीतकार इशरत कामिल का है और संगीतकार प्रीतम है।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गाने नए तराने के यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का नमस्कार। श्रोताओं, एक गीत हमारे आसपास गूंजने लगता है जो कहता है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ।
0: आवारगी का ये अंदाज लेकर के अपनी कलम के सहारे जिन्होंने इस फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई, वो अमर नाम है कवि शैलेंद्र का।
1: जी हाँ, शैलेंद्र साहब की ये जन्मतिथि 30 अगस्त बहुत सी स्मृतियों के द्वार खोल देती है। शैलेंद्र जी के गीत वो गीत हैं श्रोताओं, जो हमारे आसपास की जिंदगी को बयान करते हैं, जिन्होंने जीवन का जो गहरा दर्शन है उसे बहुत सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया है। बल्कि जयंत जी, मैं तो ये कहूंगी कि उनके लिखे जो गीत हैं उस
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे, अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: इसी का नाम है

0: जयंत जी
1: जी,
0: जिस फलसफे की बात हमने की वो इस गीत में जैसे उभर कर आ रहा था, और कोई श्रोता, कोई दर्शक, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस गीत से प्रभावित हुए बिना रहा हो। ऐसी ही बहुत सी यादें हैं शैलेंद्र साहब की, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे हैं, हमें हमारी खुशकिस्मती से मिले दिनेश शैलेंद्र जी, जो शैलेंद्र जी के छोटे बेटे हैं, और उनसे हमने टेलीफोन पर बात की और उन्होंने हमसे यादें साझा की कि किस तरह से पिता शैलेंद्र उन्हें लगते थे, कैसे उन्होंने देखा, और एक गीतकार, फिल्मकार शैलेंद्र दिनेश जी की नजरों में कैसे थे। आइए सुने उनकी इन स्मृतियों को, हमने उनसे टेलीफोन पर बात की। नमस्कार दिनेश जी, मैं विविध भारती की ओर से आपका स्वागत करती हूं और आपके पिता महान गीतकार श्री शैलेंद्र जी की स्मृतियों को नमन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका।
2: नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दिनेश जी, एक पुत्र से पूछूंगी कि आपने अपने पिता को किस तरह से देखा।
2: मनीषा जी, सच पूछिए तो बाबा जिस दिन गुजरे
0: जी,
2: उसी दिन हमें पता चला कि शायद वो कुछ बड़ा काम करते होंगे, कि इतने सारे लोग, इतनी भीड़, अगले दिन पेपर में उनकी फोटो और उनका न्यूज, ये सब हमारे को चौंका सा दिया था इन सब चीजों ने
0: जी।
2: क्योंकि हम लोग उनके घर पे माहौल जो था वो ऐसा था कि बहुत ही नॉर्मल, तो हमें तो ऐसा लगता था कि शायद शंकर जयकिशन, राज कपूर, सलील चौधरी, एसडी बर्मन, ये सभी के घर जाते आते रहते होंगे और कोई खास बात नहीं है। क्योंकि बाबा का भी रहन सहन और घर पे जो हम लोगों के साथ उनका वो था बिहेवियर, वो एकदम ही नॉर्मल था। हम सबसे छोटे थे तो जब भी घर आते थे तो हमें कोई वो फिक्र नहीं होती थी कि वो थके होंगे या काम करके आए या दिमागी तौर से आदमी थक जाते।
0: जी जी जी।
2: लेकिन हम बोलते थे घोड़ा बनो तो वो घोड़ा बन जाते थे, हमारे साथ म्यूजिक के गेम्स खेलते थे, हम लोग सब बच्चों के साथ, वो बहुत ही घुल मिल के और बहुत ही आइडियल फादर। और एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे कि वो कार में हम जब उन्होंने बंगला ले लिया था
0: जी जी।
2: तो जो भी सुविधाएं होती हैं वो सभी थी हमारे घर में, लेकिन बाबा बहुत कम डाइनिंग टेबल पे बैठ के हम लोगों के साथ खाते थे।
0: अच्छा।
2: वो अक्सर जमीन पर ही बैठ के खाया करते थे और हम लोगों को वो उन्होंने यही समझाया था कि यही हमारी जगह है, यहीं से हम शुरू हुए हैं, और बार बार वो अपने बचपन की कहानियां हम लोगों को सुनाते थे कि कितनी गरीबी में वो पले बड़े थे
0: जी,
2: वो चाहते थे कि हम लोग भी वैसे ही बने।
0: आपने जो ये बात बताई कि वो जमीन पर बैठकर खाते थे, एकदम जिसको कहते हैं ना कि मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान जो होता है, वो थे शैलेंद्र जी, और ये उनकी हर गीत में दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके गीतों ने, मैंने जो पहले भी बात कही थी कि उनके गीतों में जीवन दर्शन इतना गहरा और इतनी सरल भाषा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, ये इतनी बड़ी बात बहुत सरल शब्दों में। वहीं आपको तो खैर मैं क्या बताऊं, हम तो सुबह शाम रात दिन जैसे उनके गीतों ने हम लोगों के जीवन को, हमारे श्रोताओं के जीवन को प्रेरित भी बहुत किया। अब मैं दिनेश शैलेंद्र जी से जानना चाहूंगी कि गीतकार शैलेंद्र अपने पिता को जब आप याद करते हैं तो उनके गीतों को लेकर आपको कैसा लगता है? अभी भी जब आप सुनते होंगे तो कई बार तो आंखें भरती होंगी आपकी, क्योंकि हम लोगों की भी भर आती हैं, तो हमसे वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उसे शेयर कीजिए ना।
2: देखिए, हम तो जब वो गुजरे थे तो 10 साल के ही थे
0: जी,
2: तो उनके गाने

0: सुनते तो रहते थे, हमारे घर में म्यूजिक तो बजता ही रहता था, हर तरह के गाने बजते थे, लेकिन एक्चुअली जब बड़े हुए तब उनके गानों का मतलब समझ में आया, और फिर और जब हमारे एक्सपीरियंसेस हुए तो ये समझ में आया कि वो बहुत ही एक अलग ही किस्म से लिखते थे, जो बहुत कम राइटरों में एक टैलेंट है
1: जी, जी.
0: कि जो भी गाना उनका ले लें आप, वो एक परत अगर उठा दें
1: जी, जी.
0: जो नॉर्मल वर्ड से
1: जी.
0: तो आपको एक अलग मीनिंग अंदर दिखाई देगा और पता चलेगा. हम आज तक उनके गानों के बारे में लिखते हैं और हमें भी सीखने को मिलता है और समझ में आता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं. मतलब उनके गानों में इतनी गहराई होती थी कि एक आम आदमी तो अपने तौर पे गा लेता था. जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि गुलजार साहब के साथ एक दिन हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि होंगे राजे राजकुमार, एक श्री 420 का गाना है, मेरा जूता है जापानी, तो उसके एक अंतरा है कि होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे.
1: क्या बात है.
0: उन्होंने बताया कि ये आप उसके मीनिंग ऐसे ही ऑर्डिनरीली आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप एक परत हटाओ तो शैलेंद्र इज टॉकिंग अबाउट द न्यू इंडिया. मोनार्की खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी आ गई है, तो राजे राजकुमार तो हैं, होंगे, अब सिंहासन वो कोई भी आम आदमी जाके बैठ सकता है, ये बोलना चाह रहे हैं वो.
1: उनके अंदर की जो ये आग थी ना, ये उनकी हर रचना में दिखती है. एक फिल्म भुलाए नहीं भूलती, और वो है फिल्म तीसरी कसम, जिसको आपके पिताजी ने बहुत दिल से बनाया था, और आज तक वो फिल्म हमारे जहन में बिल्कुल तरोताजा है. वही हीरा मन और वही सारी चीजें, वही राज कपूर साहब और वही गीत, उसको लेकर के कुछ बातें हम जरूर आपसे करना चाहेंगे दिनेश जी.
0: मनीषा जी, एक शॉर्ट स्टोरी थी फणीश्वरनाथ रेणु जी की
1: जी,
0: तो जिस दिन उन्होंने पढ़ी, छोटी सी किताब थी
1: मारे गए गुलफाम,
0: हाँ मारे गए गुलफाम नाम की कहानी थी, उन्होंने जब पढ़ी तो वो शुरू से आखिर तक एक ही उसमें पढ़ी फ्लो में, और जैसे ही पढ़ी उन्होंने किताब साइड में रखी और एक चिट्ठी लिख दी रेणु जी को
1: जी.
0: तो एक अजीब सा, मतलब उनको कोई जरूरत नहीं थी फिल्म प्रोड्यूस करने की, वो सबसे हाईएस्ट पेड राइटर भी थे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर वो एक कहानी इतनी पसंद आई जो हमारे रूट्स हैं वो बिहार के हैं
1: जी, जी जी.
0: तो उनको लगा कि वो कहीं अपने रूट्स के साथ जुड़ने में ये कहानी बहुत हेल्प कर रही थी उनको. तो एक जुनून सा सवार था कि मैं इस फिल्म को तो प्रोड्यूस करूंगा ही. फिर शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीच में वो फिल्म में कुछ ज्यादा समय लग गया, जो एक साल में बननी चाहिए थी फिल्म, इनफैक्ट कुछ महीनों में बननी चाहिए
1: जी.
0: उस फिल्म को 5 साल लग गए, और जब तक फिल्म कम्प्लीट होने लगी थी तब तक सभी लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था, पर वो अकेले, मतलब उनके दिमाग में बस यही था कि ये मेरा सपना है और मैं इस सपने को पूरा करके ही छोड़ूंगा, और जो भी था उनके पास वो सारा कुछ उन्होंने झोंक दिया उस फिल्म में, और फिल्म कंप्लीट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिल्म शुरू में चली नहीं. तो कई लोगों का ये मानना है शायद फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उनकी डेथ हो गई, या वो बिल्कुल बात नहीं थी, जितना पैसा वो उस वक्त ले रहे थे ये 3-4 महीने में वो इजिली कवर अप कर सकते थे सारे लॉसेस. और ये कुछ महीनों की ही बात है कि सितंबर में फिल्म रिलीज हुई, दिसंबर में वो गुजरे, और मार्च या अप्रैल में नेशनल अवार्ड अनाउंस हुए, तब लोगों की आंखें खुली कि भाई ये इसमें कुछ तो होगा, और उसके बाद वो फिल्म जहां भी लगी है बहुत अच्छा बिजनेस किया है और लोगों को सारे गाने भी पसंद आए हैं और बहुत चली.
2: अपने बाबा शैलेंद्र की स्मृतियां बांट रहे थे उनके सुपुत्र दिनेश शैलेंद्र. मनीषा जी, हम इस बातचीत को सुन रहे थे और उस दौरान फिल्म तीसरी कसम का एक गीत बार बार मन में कौंध रहा है, क्यों ना अपने श्रोताओं को सुनवाया जाए.
1: गीतकार शैलेंद्र की अनुपम कृति सेल्यूलॉइड पर लिखी एक कविता, तीसरी कसम.

0: तो श्रोताओ, आज हमने स्मरण किया महान गीतकार शैलेंद्र को, और अब एक ऐसी संगीतकार जोड़ी की बातें जिनके गीत एक जमाने में लोगों को दीवाना बना दिया करते थे, और आज भी जब रेडियो से ये गीत बजते हैं तो उस जोड़ी की स्मृति को भी हम नमन करते हैं। और जयंत जी,
1: जी
0: हुस्नलाल जी और भगत राम जी संगीतकार खयाम के गुरु थे, जिन्हें अभी कुछ ही दिनों पहले हमने खो दिया। और इसके अलावा नौशाद साहब के भी गुरु थे हुस्नलाल जी और भगत राम जी,
1: जिनके गीतों का हुस्न देखते ही बनता था,
0: क्या बात
1: और
0: है?
1: जिनके गीतों को सुन करके उनके संगीत के सब भगत हो जाया करते थे।
0: क्या बात है। तो आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं श्रोताओं, सरगम के सितारे। हमारा एक ये बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम होता था, इसके कुछ संपादित अंश आज के विविधा में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वर निम्मी मिश्रा का है, तो आइए सुनते हैं विविध भारती के संग्रहालय से चुनी गई ये रिकॉर्डिंग।

सन 1944 में फिल्म चांद से सिने संगीत जगत में कदम रखा इस जोड़ी यानी हुसनलाल भगतराम ने इस फिल्म का गीत दो दिलों को ये दुनिया मिलने नहीं देती बहुत ही लोकप्रिय हुआ।

0: वरिष्ठ फिल्म संगीतकार खय्याम, जो स्वयं संगीतकार हुसनलाल भगत राम जी के शिष्य हैं, अपने गुरु की सुरीली यादों में खो से जाते हैं और बताते हैं,
1: फिल्मी संगीत की दुनिया में पहली जोड़ी ये थी। तो दोनों मतलब शास्त्रीय संगीत के बहुत ही बड़े गुरु, और एज वेल एज उतनी ही महारत उनको लाइट म्यूजिक में, जिसमें वो ठुमरी हो, दादरा हो, गजल हो, गीत हो, तो ये मतलब बहुत बड़ी दोनों हस्तियां थे ये लोग। तो भाई मेरी खुश नसीबी ये कि मेरे गुरु थे, और मैं जो सरगम और स्वर और ताल का जो ज्ञान मुझे मिला उन्हीं से मिला, पहले स्वर सा जिसे कहते हैं उन्हीं से मिला, सरगम और सुर और स्वर और ताल का, तो उन्हीं से ज्ञान मिला। दिल्ली में मुझे ये शिक्षा मेरी हुई, तो मैं बहुत ही मतलब भाग्यशाली हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि ऐसे गुरु मुझे मिले, और जिनसे मतलब गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो तो सबको मालूम है बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन उन्होंने तो मुझे जैसे अपनी औलाद की तरह प्यार दिया, तो ये उनका। और फिर धुने उन्होंने क्या सुरीली, क्या अच्छी और कैची और आसान धुने बनाई उन्होंने हर एक फिल्म में। आप उनकी कोई भी फिल्म आप बजाएंगे, आप देखिए कितना आसान और उम्दा और अच्छा संगीत,
0: मतलब सुरीले होने के साथ साथ वो बहुत सरल भी होता था।
1: जी हाँ, बहुत सरल होता था,
0: और फिर जब सरल हो सुरीला हो तो असर की तो क्या,
1: या यकीनन वो मकबूल होता है और आम लोगों तक, यानी हर खासो आम तक वो पहुंच जाता है।

0: प्यार की जीत ने युगल जोड़ी को अपार सफलता दिलाई। यूं तो संगीत का गहरा ताल्लुक होता है दिल से, और फिल्म संगीत वो तो हर आम और खास की रग रग में बसता है, क्योंकि उसे सुनते सुनते ही हम बचपन से किशोर और किशोर से फिर युवा और फिर प्रौढ़ कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर हुसनलाल भगत राम जैसे संगीतकारों का उम्दा संगीत हमेशा वैसा ही असरदार ताजा रहता है। योग्य पिता संगीतकार हुसनलाल की सुयोग्य संतान दिनेश प्रभाकर ने संगीत को ही अपनाया बतौर संगीतकार। पिता और गुरु की मीठी सुरीली यादें आज भी वैसी ही ताजा हो जाती हैं।
1: इस जोड़ी ने पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू एवं पंजाबी फोक को इस तरह से फिल्म संगीत में ढाला, और एक जो खास बात थी कि पंजाबी ठेका इसको शंकर जयकिशन ने भी अडॉप्ट किया, उसके बाद में ओपी नैयर जी ने भी अडॉप्ट किया, और इस तरह से कई संगीतकार हैं जो कि उनके संगीत के इन्फ्लुएंस में आए। अपने जमाने के बहुत ही बिजी संगीतकार थे, धुने तो वो दोनों भाई इकट्ठे एक साथ ही बैठ के बनाते थे, और इतने अनुबंध थे उनके कि उनको कई बार ये भी याद नहीं रहता कि हमने कौन सी फिल्म की धुन किस तरह से बनाई। पर इतने माहिर थे कि सेट पर जाते ही जब वो ये फील करते थे कि ये धुन हम पहले भी कहीं दे चुके हैं, सेट पर ही उस धुन को एकदम चेंज कर देते थे। मैंने एक्चुअली वायलिन की ट्रेनिंग ली फादर से, और उनका हमेशा यही रहा कि पहले स्टडी करो, संगीत तो तुम्हें आ जाएगा। संगीतकार होने के साथ साथ वो एक बहुत बड़े गायक भी थे और वायलिन वादक भी। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, जालंधर में शायद हरिवल्लभ संगीत सभा में गा रहे थे वो, तो उस समय काफी बारिश हो रही थी और सामने बड़े गुलाम अली खान साहब और कई कई लोग बैठे थे, उन्होंने राग गाया मियां मल्हार। तो जब फंक्शन खत्म हुआ, गुलाम अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको गले मिले और बोले कि उनका नाम जैसे आप जानते हो हुसनलाल था ना
0: जी हाँ,
1: तो कि जैसा तुम्हारा हुस्न है वैसा ही तुम्हारा गाने में हुस्न,
0: वैसा ही गायन का हुस्न भी लाजवाब है।

फिल्म बड़ी बहन के साथ हुसनलाल भगतराम के संगीत का जादू चला, जो सिलसिला बना तो कई बार एक साल में ही इस जोड़ी की 8-8 फिल्में भी आईं। सन 1950 में निर्मित सावन भादों, आधी रात, मीना बाजार और गौना तो विशेष रूप से लोकप्रिय रहीं। सन 1951 की फिल्मों में अफसाना और सनम बहुत ही उल्लेखनीय हैं।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: पर उनके काम में उनका अलग ही ढंग था काम करने का, जो खुद ही सब इवन वो अरेंजमेंट में भी इन्वॉल्व होते थे। सिर्फ गाने पे ही नहीं, धुन तो थी उनकी, प्लस वो म्यूजिक पे भी अपना बहुत ध्यान देते थे। कभी जब वो दोनों बैठे रहते थे
4: जी,
3: तब वो बैठ के ही धुन बनाया करते थे। कभी जैसे कभी मेरे पिता पंडित भगतराम जी बैठे रहते थे, उन्हें कुछ सोचता था तो वो अलग बैठ के धुन बना लेते थे
4: जी,
3: और फिर उन्हें बता देते थे कि भी ये हो गया है। और कई बार प्रोड्यूसर बैठ जाते थे, उनके सामने भी वो इमीडिएट धुन बना देते थे। राइटर लिखते थे, तो पहले तो ऐसे नहीं था कि आपने ट्यून दे दी और उस पे लिख दिया, इतना
4: हाँ।
3: नहीं हुआ करता था। पहले राइटर को फ्रीडम दी जाती थी और वो अपना लिख के तभी म्यूजिक डायरेक्टर को देते थे और वो उसी पे धुन बनाया करते थे। तो वो हर तरह से ही धुन बनाया करते थे। धुने काफी हैं, जैसे वो गाना है छुप छुप खड़े हो जरूर की बात है, इस तरह की जो है वो धुने बस जैसे आई बैठे गए दिमाग में, तो उन्होंने इमीडिएट कंपोज कर दी फिर। और उसके म्यूजिक भी देखिए, हारमोनियम का बहुत छोटा सा पीच, बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है भगतराम जी ने उसमें।
4: कुछ कोई बात खास आप अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे हम लोगों को, श्रोताओं को?
3: जी, पिताजी के बारे में यही कहना चाहूंगा कि बहुत सरल भाव के थे, बहुत सीधे थे और हमेशा संगीत में ही उनका दिमाग रहता था। और एक बात बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ लाइट म्यूजिक के ही नहीं थे
4: जी,
3: बल्कि मतलब कहने का कि सिर्फ फिल्मों के संगीतकार नहीं थे, बल्कि वो बहुत विद्वान शास्त्रीय संगीत के भी कलाकार थे। वो
4: हुसनलाल जी के साथ भगत राम जी भी हारमोनियम पर शास्त्रीय रागों को बखूबी प्रस्तुत करते थे, यानी सही मायने में थी ये जोड़ी एक दूसरे की पूरक, या यूं कहें कि एक दूसरे के लिए ही बनी थी।

0: शास्त्रीय संगीत में महारत बनाती है सिने संगीतकार की धुनों को और भी कामयाब और भी असरदार। संगीतकार हुसनलाल भगतराम जो थे सगे भाई और दोनों ही शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता। हुसनलाल जी की वायलिन की धुन स्वर कुछ अनूठे ही लगते थे जिनकी प्रशंसा में संगीतकार खयाम यूं कहते हैं।
1: देखिए उनकी खास बात ये थी कि पंडित हुसनलाल जी शास्त्रीय संगीत में वायलिन पर
0: जी
1: इतना अच्छा शास्त्रीय संगीत उसमें वायलिन में बजाते थे
0: जी।
1: तो मतलब एक रागा को पौना घंटा आधा घंटा पौना घंटा एक घंटा वो बजाते थे किसी भी एक रागा को वायलिन के ऊपर।
0: अच्छा,
1: और ऐसी टोन वायलिन की बहुत कम सुनने में मिली पूरी दुनिया में, ऐसी टोन वायलिन की कि क्या कहने है ये, क्या मतलब कोई दूसरा विदेशी इंसान भी अगर सुन लेता था पंडित जी का वायलिन तो वो बहुत सराहना करते थे।
0: अच्छा,
1: कि वाह वाह ऐसा ऐसी टोन हमने नहीं सुनी। पंडित सुलाल जी वायलिन बजाते थे और पंडित भक्तराम जी हारमोनियम उसी तरह शास्त्रीय संगीत वो इसी तरह राग रागनिया हारमोनियम पे बजाते थे
0: जी हाँ।
1: वो भी आधा घंटा पौना घंटा किसी राग को हारमोनियम पर बजाते
0: अच्छा,
1: थे
0: और
1: बहुत
0: उसमें
1: मानते।
0: हारमोनियम और वायलिन की जुगलबंदी भी होती थी।
1: खैर उन्होंने दोनों भाइयों ने तो नहीं की
0: जी
1: लेकिन जाहिर है जब काम करते थे दोनों दो दो हारमोनियम मैंने देखा कि भाई दो हारमोनियम होते थे, एक हारमोनियम पंडित जी पंडित सुलाल जी के पास होता था एक भक्तराम जी के पास होता था, दोनों भाई मिलकर काम करते। बहुत कोई चहिता शागिर्द हो तो मेरी खुशनसीबी के मुझे कभी जब वो काम करते थे, अदरवाइज जब इंसान काम करता है किसी थर्ड पर्सन को रिदमिस के सिवाय किसी को पसंद नहीं करता कि उनके पास कोई बैठे, क्योंकि एक तख्लीक करना होता है एक क्रिएटिव काम करना होता है। तो मगर मुझे अलाउड था, मैं मुझे कहते थे तू आ जा पुत्र, पुत्र आ जा तू आ जा, काका आ जा तू इधर। तो हमारे जालंधर में ना तो वो भी जालंधर के थे मैं भी जालंधर का सब वो, तो वो कहते तू तू बैठ तू ना जा बाहर। तो मैं मुझे मतलब मुझे मौका मिलता कि मैं देखता पंडित जी किस बारीकी से किस तरह सजा रहे हैं।
0: वो आपके गुरु थे तो ये तो आप जानते होंगे, तो कैसे उन्होंने ऐसा सोचा कि उससे पहले तो कभी दो एक साथ संगीतकार हुए ही नहीं थे, उन्हीं की ये जोड़ी थी, तो उन्होंने कैसे ऐसे सोचा कि दो लोग मिलके और ये संगीतकार हम बने एक साथ।
1: देखिए ये इसके लिए तो मैं मेरी मतलब बहुत ही मैं छोटा इंसान हूँ उनके सामने,
0: जी
1: वो
0: हाँ।
1: बड़े मैं कैसे पूछ सकता था कि
0: नहीं
1: वो
0: नहीं मैं पूछ रही,
1: क्या
0: मैं अपनी
1: समझती। तो
0: जानकारी
1: मैं
0: के
1: तो उनके सामने मैं तो कुछ मैं तो हमेशा आपने सुना भी होगा मैं कहता हूँ कि मैं जो खयाम है उनके पांव की धूल भी नहीं है
0: अरे क्या
1: जितने
0: बात।
1: बड़े वो थे।

0: गुणी कल्पनाशील संगीतकार के साथ साथ एक हंसमुख खुश मिजाज सरल इंसान भी थे हुसनलाल जी और भगत राम जी। पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जो इनके शिष्य भी थे गुरु की यादों को ताजा करते हुए।
1: पंडित हुसनलाल जी को मैं जब मिला, गुरु जी के पास इतनी पिक्चरें नहीं थी, लेकिन म्यूजिशियन आला ग्रैंड और टीचर आला ग्रैंड भगत राम जी भी और हुसनलाल जी भी। हुसनलाल गुरु जी और भगत राम गुरु जी इतने लायक थे और इतने डाउन टू दी अर्थ, और एक तो कंपोजर इतने एक्सीलेंट थे, और फिर उसके बाद जो मैंने इनसे सीखा वो ये है कि हार्ड वर्क और रियाज बहुत जरूरी है, और रियाज बहुत करवाते थे और रियाज खुद बहुत करते थे गुरुजी।
0: मतलब अभी मतलब जब वो गुरु थे सिखाते थे तो भी रियाज करते थे लगातार
1: बहुत। अच्छा। बहुत जबरदस्त 24 घंटे। मैं जब भी गया हूँ इनके यहाँ तो मैंने इनको या गाते हुए देखा है या वायलिन बजाते हुए देखा है।
0: अच्छा।
1: गुरु जी को
0: पूरी तरह संगीत में डूबे हुए थे
1: बिल्कुल।
0: अच्छा और... आपने उनकी बनाई किसी धुन पे कोई गाया गीत
1: है जी?
0: आपने उनकी किसी तर्ज पे कोई गीत गाया हो?
1: मैंने गाए थे।
0: हाँ, कोई खास
1: है जी?
0: कोई खास गीत जो आपको याद हो?
1: अभी फिलहाल तो मेरे को ऐसी याद नहीं। पहाड़ी में इनके दो तीन गाने थे
0: जी,
1: इन्होंने फिल्म में गवाए थे मुझे।
0: अच्छा।
1: और वो इनकी लास्ट फिल्म थी।
0: अच्छा,
1: हाँ जी हाँ जी।
0: अच्छा, लास्ट।
1: लेकिन यू सी क्या है कि कॉम्पोजिशन के साथ साथ जो मैंने इनसे विद्या ली है ना, वो बहुत वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। इन्होंने जो विद्या दी मुझे वो बहुत मेरे काम आई।
0: अच्छा।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और कोई खास बात?
1: और इतने अच्छे जेंटलमैन, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दोनों भाई इतने अच्छे जेंटलमैन थे कि इतना अच्छा स्वभाव, इतने बड़े टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद ये लोग हमेशा हंसते रहते थे। अच्छा। हमेशा खुश रहते थे और कहा करते थे कि भी खुश रहना चाहिए। ठीक है, जो अगर भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में रहना चाहिए, लेकिन अपना रियाज नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ जी, मतलब
1: सरस्वती माँ की पूरी सेवा इन्होंने की है। देखिए मैं आपको बताऊं कि रेडियो प्रोग्राम पे गुरुजी का मुझे फोन आया दिल्ली से कि मैं नेशनल प्रोग्राम पे गा रहा हूँ। है जी,
0: जी।
1: इन्होंने गाया, ऐसा गाया कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सुनने वालों ने ये समझा, जो लिसनर्स थे, बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने इंक्वायरीज की कि सिंगर कौन थे जिन्होंने गाया। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ तक गुरुजी ने बताया था। यहूदी मैनियन
0: जी
1: जब आए थे यहाँ, उन्होंने इनकी वायलिन सुन के उन्होंने कहा इतना बड़ा आर्टिस्ट, ये कैसा आर्टिस्ट है ये हमारे हिंदुस्तान में ऐसा आर्टिस्ट और हमारे वर्ल्ड में ऐसा आर्टिस्ट, मैंने कभी ऐसी वायलिन सुनी नहीं, इतनी अच्छी वायलिन बजाते हैं ये।
0: ये तो मतलब खूबी है कि गाते भी थे और वायलिन भी बजाते थे।
1: वायलिन भी बजाते थे
0: और दोनों बराबर दर्जे की, उच्च दर्जे, उच्च कोटि की।
1: और देखिए कि अगर 6 घंटे रियाज करते थे गाने का, इन्होंने कभी टाइम देखा ही नहीं था। मुझे लगता है 8 घंटे फिर वायलिन का करते थे, इतना मतलब लगे हुए थे म्यूजिक में कि इनको कुछ होश नहीं रहती थी।
0: आप कोई उनका गीत गुनगुना पाएंगे उनकी बनाई?

0: कुछ याद आ रहा है क्या?
1: उनके गीत पुराने जो थे, बहुत जो पॉपुलर हुए,
0: जी हाँ,
1: बड़े अच्छे अच्छे गीत थे, हालांकि वो फिल्मी गीत थे।
0: आप कुछ गुनगुना सकते हैं? कोई बिगड़ी बनाने वाले, चुप चुप खड़े वो, दूर जाने वाले, कितने सारे।
1: मुझे याद है, मैं तो बचपन में गाता था वो। बिगड़ी बनाने वाले,

0: मुखड़ा है
1: जी,
0: ये बड़े गुलाम अली खान साहब बड़े खुश होते थे सुन के।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने खान साहब ने ठुमरी में इस मुखड़े को ले लिया था।
1: अच्छा।
0: मतलब इतने इंस्पायर हुए थे खान साहब।
1: अच्छा।
0: गुलाम अली खान साहब, उन्होंने पंडित जी को कहा, गुरु जी को, कि वाह हुसैन लाल जी क्या बनाई आपने तर्ज।
2: प्रसिद्ध सरोदवादिका जरीन शर्मा जो भगत राम जी की बहू हैं, उनके संगीत से बहुत प्रभावित हैं।
3: संगीतकारों में वो तो फिल्म इंडस्ट्री के पिलर थे
1: जी,
3: जिन्होंने आने वाली पीढ़ी को ये मार्गदर्शन दिया कि संगीत को कैसे बनाना चाहिए, फिल्म संगीत क्या है, किस दर्जे का होना चाहिए, जिसमें अमर धुने दी है, मेलोडी कभी मरती नहीं है
1: जी,
3: वो उन्होंने अपने संगीत के द्वारा साबित कर दिया है। और केवल फिल्म म्यूजिक में ही नहीं, शास्त्रीय संगीत में भी वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने पंडित दिलीप चंद्र बेदी जैसे शास्त्रीय संगीत की तालीम हासिल की, कई शास्त्रीय संगीत के प्रोग्राम दिए, और शास्त्रीय संगीत में उनका फाउंडेशन इतना अच्छा था, इसीलिए वो फिल्म म्यूजिक में भी बहुत उम्दा संगीत दे पाए। उनका हर जो भी गाना देखिए, ऐसा नहीं एक दूसरे से मिलता रहता था, हर एक का अपना अंदाज होता था, हट के गाना होता था, मेलेडी होती थी। आज भी, आज सालों साल हो गए पर आज भी एवर ग्रीन है, जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है बस सुनते रहो। तो ये तो जब तक आपके अंदर मेरिट नहीं हो ये बात कभी नहीं आ सकती
1: जी,
3: क्योंकि एक आपके पास इतनी विद्वत्ता है कि आप उसको अलग अलग अंदाज में पेश कर सकते हैं।
1: हाँ।
3: जब आप किसी चीज से सीमित रहते हैं
1: जी,
3: तो आप उस काबिल नहीं बनते कि आप अलग अलग चीजों का प्रयोग करें
1: जी।
3: अब जिनको राग की जानकारी हो तो वो हर अलग अलग रागों के आधारित गाना बना के
1: जी,
3: तो ये सब जानकारी होने की वजह से वो सब कर सकते हैं
1: जी। हाँ।
3: और उन्होंने हर तरह से नई नई चीजों को प्रयोग में लाया है, जैसे चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है
1: जी,
3: ये देखिए तो उसमें रिदम का पैटर्न देखिए, हारमोनियम का पीस देखिए, मटके का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया
1: जी।
3: तो ये जो बातें होती है वो हमेशा सोचते थे कि आज ये गाने में हम नया क्या चीज बनाएं। उनको अपने काम से बेहद लगन थी, ये भी बहुत जरूरी है, सिर्फ आपको नॉलेज होने से कुछ नहीं होता है
1: जी, जी।
3: आपको अपने में कितनी लगन है वो लगन काम करती है
1: जी।
3: हर तरह से हर नए नए चीजों को प्रयोग में लाना और खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने लाना
1: जी,
3: ताकि लोग उसको तारीफ करें और लोगों को भी अच्छा लगे। जितने महान थे उतना ही वो नम्र थे
1: जी।
3: मतलब मैं तो ये को कभी मानना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि इतना विद्वान हो के इतनी नम्रता से वो बात करते थे, अपने से छोटे कलाकार को भी इतना मान देते थे जैसे उसको लगे अरे बापरे क्या बात है।
2: सिने संगीत के पुराने सुनहरे दौर में रविवार की रात रेडियो सिलोन से एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता था, हमेशा जवां रहने वाले गीतों का कार्यक्रम। उसका शीर्षक गीत भी हुसैनलाल भगत राम जी की ही तर्ज है। सन 1944 से 1954 तक के दशक में इस सफल संगीत जोड़ी हुसैनलाल भगत राम का ही एक छत्र राज्य था। सन 1955 में बनी फिल्म अदले जहांगीर के संगीत की

फिल्म प्यार की जीत का वो गीत जो अमर गायक मोहम्मद रफी के यादगार गीतों में गिना जाता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, संगीतकार हुसनलाल भगतराम की धुन का ही कमाल है।

0: ये कहना तो देखिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर गीत उनका अच्छा था। और फिर वो देखिए, वो भी आपने वो भी गाना आपने सुना होगा ना, तूने मेरा यार ना मिलाया।
1: अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत
0: तूने

हुसनलाल भगतराम सिने संगीत आकाश की धूम केतु के समान अपनी रोशनी चमक बिखराकर थोड़े से समय में ही चल दिए, पर दी गए ऐसी नायाब धुनी कि सिने संगीत के खजाने को जिन्होंने मालामाल कर रखा है, जिनमें से कुछ मधुर धुने गुनगुना कर हम किसी भी पल कर लेते हैं खुद को ताजा और याद कर लेते हैं ऐसी दुर्लभ धुनों के सर्जक को।

0: संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम पर केंद्रित ये सरगम के सितारे कार्यक्रम था जयंत जी, और इसकी हमने संपादित रिकॉर्डिंग आज श्रोताओं को सुनवाई।
1: अब और कुछ कहने को बचा नहीं है, समय भी बचा नहीं है, और अगली विविधा के लिए अपने श्रोताओं से वादा करते हैं कि कुछ और बेशकीमती रिकॉर्डिंग्स हम उनके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रोताओं दीजिए आज्ञा, जयंत पात्रीकर।

0: और मनीषा जैन, हम दोनों ही का
1: आपको
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलाव

0: अबों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल आप सुन रहे थे। आवारा फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आसमान की सैर कराते गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, पीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

हम आकाशवाणी नागौर के चिरमिट चैनल से बोल रहे हैं, एफएमएन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही देर बाद हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से, माफ़ कीजिएगा, जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आज चर्चा में उनसे लगातार प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना जरूरी है जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर इसरो की ओर से अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष कार्यक्रम का केंद्र समाज विकास और मानव कल्याण पर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने भारत के अंतरिक्ष विज्ञानी डॉ विक्रम साराभाई की फिलॉसफी और दृष्टिकोण को अपनाने का आह्वान किया।
1: हम वेदर फोरकास्टिंग पर कितना बेहतर काम कर सकते हैं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट में किस बेहतर तरीके से, किस प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं, हम रिमोट एरियाज को कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सारे विषयों से किस तरह से जोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम गवर्नेंस को किस तरह से और अधिक प्रभावी और पीपल सेंट्रिक बना सकते हैं। भारत की इस क्षमता का आकलन हमको इसके आधार पर करना पड़ेगा। And that is the space philosophy of India, envisioned by Professor Dr. Vikram Sarabhai. और उन्होंने कहा कि space for society, space for development, space for humanity.
0: इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम विकसित भारत की ओर नवाचार, सहयोग और वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की आकांक्षा रखी गई है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साइकिल का उपयोग पर्यावरण के लिए लाभदायक है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि संडे ऑन साइकिल पहल का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करना और स्वस्थ जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना है। आज देश के करीब 1800 शहरों में इसका आयोजन हुआ जिसमें लगभग 50 लाख युवाओं ने भाग लिया। ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी शामिल हुए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी जिलों में चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव संबंधी गतिविधियों को लेकर बनाए गए नियंत्रण कक्षों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही निकाय चुनाव के लिए गठित विभिन्न प्रकोष्ठों की बैठक कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम ने नगर परिषद और नगर पालिकाओं के विभिन्न मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया। वहीं स्वीप गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बुकिंग और विशेष डाक सेवाओं के लिए आज अवकाश के दिन रविवार को भी कई प्रमुख डाकघर और उप डाकघर खुले हुए हैं। झालावाड़, बारां, बूंदी, डीडवाना और उदयपुर सहित कई मंडलों में विशेष काउंटर संचालित हो रहे हैं। साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए डाकघरों में विशेष वाटरप्रूफ राखी, लिफाफे और पैकिंग बॉक्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने डाक के माध्यम से

0: देश की सीमाओं पर मातृभूमि की रक्षा में तैनात जवानों और उनके परिवार को राखियां भेजी। रणथंभौर बाघ परियोजना की फलोदी रेंज के दूमोदा और कैलाशपुरी गांवों में सक्रिय तेंदुए को वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ लिया है। निगरानी और रेस्क्यू के लिए 40 से अधिक कैमरा और केज ट्रैप लगाए गए। गौरतलब है कि तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मृत्यु के बाद क्षेत्र में भय का माहौल था। उप वन संरक्षक मानस सिंह ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिलाया। विभागों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है, तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पे जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वही हमारे एक और साथी कहने कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं, और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है, और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर है या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हो, यानी चेचक के दाग हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है, तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा, बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा परियां चांद सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के खूबसूरत चंद्रमा को देखने

आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है, और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

0: बचपन हर गम से।
1: गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारा मंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ही गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी

बानगी वे गीत हैं जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं। इसको जिस जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वही हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है। सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था। सभी के मन पर बुराज करता राज करता है, जवा दिलों के सपनों का सौदागर है। करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कुजागरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा का को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर। कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते। कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त के इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना। डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए, मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है। यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

वचन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज, रवि का संगीत। यही हमने सवाल आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी ने तो ये भी बताया कि ये गीत गीता बाली पर फिल्माया गया है, और हमारे साथी ने आशा भोसले की आवाज को भी सही पहचाना। चांद वही है, आसमान भी वही है, बस उसे देखने का वो बचपन कहीं खो गया है। पहले वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, अब पास होकर भी दिल तन्हा सा हो गया है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिख भेजा है। हमारे एक और साथी हैं, बहुत सी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। तो एक साथी लिखते हैं कि आज विज्ञान चांद तक पहुंच गया, रॉकेट और यान उसकी सतह को छू रहे हैं, लेकिन हमारे मन का चांद आज भी उतना ही रहस्यमय और प्यारा है। शायद इसलिए चांद आसमान में जितना दूर है, हमारे दिल और हमारी यादों में उतना ही करीब है। वहीं हमारे एक साथी लिखते हैं कि भारत में हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। अंतरिक्ष दिवस का महत्व है कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद दिलाता है। इसी दिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित उतरा था, और इस उपलब्धि के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की रातें जब अम्मा लोरी गाती थी, चांद के उस आंगन में परियां रोज ही आती थीं, कागज की वो कश्ती लेकर तारों पार पहुंचते थे, चंदा मामा के संग संग हम भी आसमान चढ़ जाते, कभी धूप की चादर ओढ़े, कभी छांव से आंख मिचौली, सपनों के उस मेले में थी मन की कितनी भोली झोली। आज उम्र के इस मोड़ पर भले चांद को हमने पा लिया, पर बचपन वाला जादू हमने दिल में आज भी जिंदा रख लिया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि वो बचपन के दिन, बड़ा सा खुला आंगन, खेल खिलौने और चांद, रात खुले खुले आसमान के नीचे बिछी खाट और दादा दादी माँ की कहानियां, तब सिर्फ कुछ मांगना नहीं था, टूटते तारों से बस चांद की चमक और उसे निहारते हुए उसकी कहानियां सुनना, कोई बोल रहा वहां परियां रहती हैं, तो कोई उसकी छवि में सिमटकर बैठी बूढ़ी महिला, बस हमारी कल्पनाओं के घोड़े तभी तो दौड़ लगाते थे कि सवालों का उत्तर जो भी मिलता था सच ही लगता था। आज भी चांद हमारे जीवन की यात्राएं श्रद्धा के साथ शामिल है, व्रत त्योहार उसके बिना अधूरे। पूर्णिमा के दिन दूध में भिगोए पोहे खाने का रिवाज है, आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन, जिसे उस रात चांद की चमक में रखकर ठंडा करके खाते हैं। और माँ कहती थी उस रात में जो सुई में धागा पिरो सकता है, उसकी दृष्टि उतनी ही तेज होती थी। और हमने तरक्की कर ली, इस सुहाने सफर को कितना आसान बना दिया, हम उसकी जमीन पर जाने लगे, पर वो बच्चों को सुनाई गई कहानियों ने असर ऐसा छोड़ा कि आज भी धरती से चांद उतना ही हसीन लगता है। बचपन के वो दिन अब नहीं रहे, लेकिन गांव छूटा, गली मोहल्ले और खुले आसमान में सोते हुए तारों को देखना और चांद की कहानियां सुनना, अब सब बदल गया है। ऐसा हमारे साथी का कहना है कि अब सब बदलता जा रहा है। तो क्यों बदल रहा है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि अब वो सारी चीजें नहीं है जिसके बारे में हम बचपन में सोचा करते थे, क्यों? और हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि गीत लिखते साथी कि बचपन की रातें ना बिजली से रोशन थी ना मोबाइल से, वो माँ की गोद और चंदा मामा की रोशनी से उजली थी। माँ लोरी गाते गाते जब परियों की कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद पर सच में एक मामा रहता है, जो बादलों की रुई से हमारे लिए खिलौने बनाता है, रात को चुपके से आंगन में रख जाता है। हम आंखें बंद करके कल्पना करते थे कि परी आएगी, उड़ते घोड़े पर बिठा कर चंदा मामा के घर ले जाएगी, और माँ की लोरी और चंदा मामा की ठंडी रोशनी मिलकर हमारे लिए एक ऐसी दुनिया बना देती थी जहां न डर था न उदासी, बस परियों की हंसी और सपनों की उड़ान थी। आज बड़े होकर समझ आता है कि वो परियां कहीं और नहीं थी, वो माँ के हाथों में थी जो लोरी गाते हुए थपकी देती थी। कितनी सुंदर बात हमारे साथी ने लिखी। और हमारे एक और साथी बचपन के सुहाने दिन को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब माँ और दादी खाना खिलाते समय, सुलाते समय चंदा मामा की कहानी सुनाती थी, वो बचपन का दौर हम सभी के जीवन का अनमोल दौर होता है जो कभी भी लौट कर नहीं आता, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सुहाने दौर की यादों में खो जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें याद की। एक साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, दूध के कटोरी में दूध भात लेते आवा सुना करते थे हम बचपन में। हमारे एक और साथी कह रहे हैं चंदा बचपन के हमारे मामा, सच चरखे वाली बुढ़िया को हम सचमुच का समझ जाते थे। और एक और साथी भी कह रहे हैं कि चांद बचपन से एक नाता है, चांद से मामा है, लेकिन चांद सिर्फ बचपन का मामा ही नहीं रहा, अपने भाई के लिए दूर देश या बॉर्डर पर बहना उसके लिए खुशी की प्रार्थना करती है। कभी करवा चौथ पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु या प्रेम की बातें प्रेमिका अपने चांद के साथ साझा करती है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि चंदा के लिए गाना वो अलग अलग

सुनते हैं, एक साथी कह रहे हैं कि आज के दिन 3 साल पहले चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुई थी और ये हमारे लिए गर्व का दिन था। हमारे देश भारत किसी से पीछे नहीं है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि चांद यूनिवर्स का एक बहुत ही खास हिस्सा है और बहुत ही खूबसूरत भी उन्हें लगता है, बहुत ही रोशन है और वो अक्सर से शाम को देखा करते हैं और सोचते हैं कि कितना खूबसूरत ये नजर आता है, उसे एक अपना अच्छा चहेता दोस्त ये मानते हैं, ऐसा अंग्रेजी में इन्होंने लिखा जिसका हिंदी अनुवाद हमने करके आपको सुनवाया। हमारे एक और साथी ने लिखा, निम्बुणिया चाम झाड़ा मागे चंद्र झोपला गबाई, आज माझा पाड़साला झोप का ग येत नाही। ये मराठी लोरी हम बच्चों को सुनाते थे और ऐसा ही हमारी एक और साथी ने भी इसी लोरी को याद किया है, लेकिन हमने याद क्या किया है, किसी की याद कब आती है चांद को देखकर, वो गीत आपको सुनवाते हैं। आपको पहचानना है आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

0: जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे। हम स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि मेरी उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का जमाना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नजर आ जाएगी, वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में हमें चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वही हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इस गीत को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां उसे चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना होगी कब डूबेगा ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी है। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपने ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।
1: दिन सपने में

0: कहां, काल कहां, सम कहां, तुम कहां, हम कहां, तेरे कर तुम, नान कर तुम, तेरे कर तुम, नान कर तुम, हम तुम, नताहत, हिपाता, लताहत, पताहत, मरकत, करामत,
1: ताते चिता, ताते चिता, ताते चिता, थैया, थैया, थै, तकता तुम, तकता तुम, तकता न्या,
0: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के, बच्चों को प्यार करती कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है, चांद से महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदा। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे, कभी

भिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्निल संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सरक कर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे और साथी कह रहे हैं कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है। और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं, क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है। तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है। तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहने चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं। बहने चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा, नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन, कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है, बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम, और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है। और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या? गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है, वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारस मणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं, क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वही हमारे साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है। श्री कृष्ण ने भी तो चांद के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, टिटुर टिटुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काटती थी, कभी कभी हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहां ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे कौर साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: आइए सुने त्रिवेणी।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर आचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का

सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में 3rd राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह

0: दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
2: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। IMD ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहंडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहंडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंसाधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच

0: बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमेरिकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने होर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमेरिकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 184 रन बना लिए हैं। इस मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। भारत ने पहला मुकाबला 165 रन से जीता था। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन।
2: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी और 51 रन से हरा दिया है। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर रहीं। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर और भारत चौथे स्थान पर है। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। पूल ई का ये मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। नीदरलैंड्स 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक प्रतिबंध अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत की

0: मैच जीतना जरूरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।

जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान।

0: ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना हे आला दिना बदली दुनिया के आया नया
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम, देवी, मिशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अमोला महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जूनातार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी की पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतलानगर से अर्पा पैरी, पार्वती, राधा, शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मधु आयाम और प्रतीक कुमार, ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार, गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू शालराज और वंशराज, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े, सुभाष दिगंबर, राजेश गड़े, शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल जाह्नवी के बोल, खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भर्री टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन।

0: हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: मैंने घर के मानी। अरे शीतक तो हमारी सहन के सामने ही रुका। बाप रे कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने खिलौना, बॉय के माने। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बटके जरा बटके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टीओ वाई टॉय, टीओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बीओ वाई बॉय, बीओ वाई बॉय, बीओ वाई बॉय, बीओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना, बीओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें क्राकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बीओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट न जाए हाथ से।
2: एक को छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बीओ वाई टॉय, टॉय के माने लड़का। टी ओ वाई बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: टी ओ वाई बॉय।
0: टी ओ वाई बॉय होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठने देगी?
3: तुम्हारा घर कहाँ है?
0: वो सामने। तुम्हारा?
3: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
0: तो
3: पापा की बदली हुई है, तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
0: कब?
3: पता नहीं।
0: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
3: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना। मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
0: तो
3: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
0: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। टीओ वाई टॉय,
3: बीओ वाई टॉय,
0: नहीं टीओ वाई।

0: देख रहा था।
1: झूठ।
0: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
1: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
0: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
1: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती है क्या?
0: हाँ, तुम्हारी?
1: मेरी मम्मी भी देखती है।
0: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं, पर होमवर्क फिर भी देखती है।
1: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
0: हाँ, मैं समझा था तुम भूल ही गई होगी।
1: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
0: वो क्या होता है?

0: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
1: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
1: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे मालूम है, मेरे मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ मेरे भी।
1: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
1: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
1: अच्छा।
0: हाँ अब बैठो सीट पर। उफ़ो, नहीं पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
1: अच्छा ले लिया।
0: हाँ बस अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा जब मैं कहूंगी तब छोड़ना, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा छोड़ूं?
0: नहीं नहीं अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।
1: ऐसे?
0: तुम तो डरते हो डरपोक कहीं के।
1: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी, वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
1: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
1: अच्छा
0: देखो मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूंगी गो, ठीक है?
1: हाँ अब कहो ना गो।
0: गो।
1: गिरा।
0: अरे तुमने हैंडल से हाथ हटाए थे ना?
1: कहाँ हटाए?
0: लगी तो नहीं?
1: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
1: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ, तुमने किसे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
1: नहीं।
0: और नहीं तो क्या?
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई,
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर?
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले गए होंगे।
0: चूहे?
1: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया, अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
0: ताकि चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
1: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
0: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: की कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, काय की तोड़ा मेरा।
0: बी ओ
2: जानती हो हमारे यहाँ बुलबुल ने बच्चे दिए हैं।
0: हैं? कहाँ?
2: बाग में पेड़ पर। चल दिखाता हूँ।
0: चल चल
2: आ जा,
3: जल्दी
2: आ जा।
0: अगर हमारे भी पंख होते,
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती।
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास।

0: फिर गए
1: तब हम खिड़की से अंदर आते
0: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
1: क्यों?
0: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं, पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश आगे चलो आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
1: क्यों, उसे क्या हुआ?
0: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
1: फिर
0: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय, फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
1: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
0: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते ही।

0: यहाँ बैठी हो? पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनके मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: ओफो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। B.O.Y. टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी। मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
1: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
1: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
1: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।
1: डरपोक डरपोक,
0: खुद शर्मीली नहीं है?
1: नहीं, तुम

0: तुमने झूठ बोला होगा। मम्मी कहती है जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट लाके दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है,
3: बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना?
1: मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।

0: मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूँगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूँगी।
1: क्यों?
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूँगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो,
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है। ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इतने घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
0: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो आओ,
0: चलो आओ। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करें इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कहेगी?
0: सच, मुझे मालूम है। जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रोई थी। झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुंह थी, उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
2: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
1: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
2: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
1: हाँ, वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
2: तुम कहाँ जा रहे हो?
1: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
2: रुमाल?
1: हाँ, डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
2: डैडी मारेंगे?
1: वो कुछ नहीं कहेंगे।
2: झूठ
1: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बरामदे का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
2: क्यों?
1: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
2: अच्छा, लपेटो फिर।
1: ना, तुम लपेटो।
2: क्यों, तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
1: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं, मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
2: अच्छा, ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
1: लो।
2: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
1: मुझे भी।

0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाचित से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए हैं ना,
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है,
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं, मैं नहीं डरती वरती पापा से।
2: झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे।
1: तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे। पीओ वाई
1: बाय।
0: नहीं।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
3: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
3: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
4: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे हाँ।
0: अरे इसमें भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
1: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
1: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
1: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: मैं तुझसे नहीं बोलता, कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ।
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना काज कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?

0: अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे, ऐसे।

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने
0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपनी कहानी उतनी रहेगी, चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
3: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
6: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
7: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
6: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
7: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
6: पर रेरा तो शहरों में।
7: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
6: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
8: उजाले उनकी यादों के।

उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपने

0: कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्र जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा। क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ, सब कुछ खिलाफ विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, वो होती है जिद।
1: वाह वाह।
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात।
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं।
1: जी जी।
2: पर मुझे तो वहीं जाना था, तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह।
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5,000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूं। और आप जवाबदेह है, उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है। छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां के शुरुआती दिन कैसे थे?
2: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
2: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी।
2: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
2: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है?
1: वाह।
2: तो मेरी तरफ देख के हंसे वो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा। वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के
1: जी।
2: लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
2: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे? तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी।
1: हाँ।
2: तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा,

0: उधर बाहर जाना है आपको, तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहां पर एक कमरा है, यहां पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे उनका स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी। मैंने कहा मैडम आप यहां क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक सर।
1: ओ हो घोड़े को जलेबी
0: खिला
1: जिन्होंने आगे चल के फिल्म
0: बनाई। मेरी क्लासमेट जो पीएन हक सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, लीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग?
0: नहीं नहीं वो नहीं बता, उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों भी, दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है।
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली पढ़ने वाले के लिए। मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे गजब,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं।
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई अमोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी है।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, दो दिन हफ्ते में, दो दिन डांस कर रहे हो, दो दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, दो दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे हैं। उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है, वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की, क्या कहते हैं, एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी। सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए। और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड के ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ। और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आई, तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता उस समय, एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला, और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं। फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के, जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर

0: रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे हैं, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग उनकी अपने तरीके का। हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10। हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एम के रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमावडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सब का एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी हम वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो, और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक अच्छा। कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला, और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी,
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर वो 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है, क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो, तो ये सोचना समझना कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो, पर मैंने ये तय किया था जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है कि
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है,
1: वाह वाह,
0: बचाना है बाद में देखेंगे, खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दर्द।

हरकत है और हरकत में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले पर

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में। प्रांजल साई किया है, वहां आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के, थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी
0: नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज मोहन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है,
0: वाह,
1: जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राजकिरण बम्मा है वो मॉरिशस में है। तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, एक प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। नीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपनी तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ तीन साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता, इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टीवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं। एक्टर होता मैं, बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है, इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था। मेरा नाटक कुछ

0: बात कहें वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझ वारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची आधा मराठी में
1: जी,
0: या
1: जी।
0: मुहे पिया मध्यम व्यायोग जो है
1: जी,
0: इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात
0: तो
1: है।
0: यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, तीन मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के, वो केशर भाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हमें तीन अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने दो या तीन फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने तीन ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो दो ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं
1: है, एक्स्ट्रा थे,
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
1: बहुत इंटेंस नाटक है,
0: और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारण जी, हबीब कन्वीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक के, वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल ब्रेक, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है, तो 3 साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रजमोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर, और दैट वाज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल 3 इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में

0: पूछकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लेगा आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात

0: मैंने सीरियसली लेगा, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा चेंज की।
0: मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में नाटक के भी बाहर, तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो।

0: गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
1: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते
0: अलग दोनों भी दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
1: जी
0: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
1: जी
0: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
1: जी, इज
0: अ प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
1: अरे गजब।
0: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
1: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
0: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बाप रे।
0: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं।
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड़ डोमिनेशन है कल्चर में। तो ये एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड़ कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के क्या कहते हैं आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टरी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो, उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो जितनी धारधार हथियार लेके वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है।
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम।
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम। तैयम का मतलब है देव,
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव बनकर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है, मेकअप

0: से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन है।
0: यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए चार चार पांच पांच घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है,

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती,
1: इतना बड़ा है वो।
0: इतना ऊंचा है। और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दुधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो 3 महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारे यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं, और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर
1: जी
0: उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती है, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम। और वो आग जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको

0: 32 बार पेट पे जंप करना है
1: अरे
0: और
1: बाप रे
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से, जलकर जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
1: जी,
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है। तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे ती चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम। वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं, उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहां कहां है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल

0: एक संगम हो रहा है।
1: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की है, विजुअल्स वहां के है, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व थिंग।
0: जी
1: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलॉसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलॉसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था। लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, उस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मोमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
0: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

अभी आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं और समय है कार्यक्रम युवाणी का, तो लीजिए पेश है कार्यक्रम युवाणी।

फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, इसलिए कुछ हमारी सुनिए और कुछ अपनी सुनाते रहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं हाजिर हूँ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट डिम्पल सिखवाल। स्वागत करती हूँ आप सभी का ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवा दिलों की धड़कन युववाणी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात। दोस्तों, आज की दिनांक है 23 अगस्त और आज की बात में हम थोड़ी ज़मीन से ऊपर उठकर करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जहां न आसमान की कोई सीमा है और ना ही इंसान के सपनों की। फ्रेंड्स, बात हो रही है अंतरिक्ष की यानी स्पेस साइंस की, और भारत के गौरव इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, हर साल 23 अगस्त को यानी आज ही के दिन भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। ये दिन हमारे लिए खास है क्योंकि 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की।

थी। और दोस्तों, वो सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन की सफलता ही नहीं थी, वो पल था जब करोड़ों भारतीयों ने एक साथ गर्व महसूस किया था। सोचिए, चंद्रमा, जिसे हम बचपन से रात के आसमान में देखते आए हैं, कभी कविताओं में, कभी कहानियों में और कभी सपनों में, उसी चांद की सतह पर भारत ने अपना तिरंगा पहुंचाया। और सबसे खास बात, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल लैंडिंग करके दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। लेकिन फ्रेंड्स, इसरो की कहानी सिर्फ चंद्रयान 3 से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी, जब भारत के पास संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास में डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान था। उनका मानना था कि अंतरिक्ष तकनीक का इस्तेमाल केवल अंतरिक्ष को समझने के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी होना चाहिए। और आज हम देख सकते हैं कि उनका सपना कितना बड़ा था। आज सैटेलाइट्स की मदद से हमें मौसम की जानकारी, कम्युनिकेशन सर्विसेज, नेविगेशन, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और कई दूसरी सुविधाएं जो है हमें मिलती है। यानी फ्रेंड्स, स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट और एस्ट्रोनॉट्स की कहानी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी हुई है। हम बात करते हैं इसरो की कुछ शानदार उपलब्धियों की। भारत ने चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी हासिल की। और इसके बाद आया मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान, जिसने भारत की स्पेस एक्सप्लोरेशन क्षमता को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। और फिर आया था चंद्रयान 3, जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा तो पूरा देश जैसे एक साथ बोल उठा, भारत माता की जय। दोस्तों, वैज्ञानिकों की मेहनत, वर्षों की रिसर्च, कैलकुलेशंस, टेस्टिंग और टीम वर्क का परिणाम उस एक ऐतिहासिक क्षण में दिखाई दिया। और यही तो साइंस की खूबसूरती है दोस्तों। साइंस में कोई जादू नहीं होता, साइंस में होता है सवाल पूछना, जवाब खोजना और बार बार कोशिश करना, और साथ ही असफलताओं से सीख कर आगे बढ़ना। फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 की लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन उस अनुभव से हमें सीख मिली और उसी सीख ने चंद्रयान 3 की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और यही संदेश हमारे लिए भी है कि फेलियर इज नॉट द एंड, फेलियर कैन बी ए लेसन फॉर द नेक्स्ट सक्सेस। और अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर स्पेस साइंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसका जवाब है क्योंकि अंतरिक्ष को समझकर हम अपनी पृथ्वी को भी बेहतर समझ सकते हैं, है कि नहीं? साइंटिस्ट सैटेलाइट्स की मदद से पृथ्वी के वातावरण, समुद्र, जंगलों, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं का भी अध्ययन करते हैं। और सैटेलाइट इमेज से किसानों की जो है खेती से जुड़ी जानकारी मिल सकती है, मौसम विभाग को साइक्लोन और वेदर पैटर्न समझने में मदद मिलती है, और साथ ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दूर दराज के क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में भी मदद करते हैं। यानी ऊपर आसमान में घूमता हुआ एक सैटेलाइट कहीं न कहीं नीचे धरती पर हमारी जिंदगी को आसान बना रहा होता है। और स्पेस साइंस का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है दोस्तों। हम जितना अंतरिक्ष को समझते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि हमारी पृथ्वी कितनी अनोखी है। तो आज नेशनल स्पेस डे पर हमें सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों को सैल्यूट ही नहीं करना, हमें उन लाखों बच्चों के सपनों को भी सैल्यूट करना है जो आज आसमान की तरफ देखकर ये सोचते हैं कि एक दिन मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा, एक दिन मैं भी रॉकेट बनाऊंगा और एक दिन मैं भी स्पेस में रिसर्च करूंगा। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है आज जो बच्चा साइंस की कोई छोटी सी किताब पढ़ रहा है, कल वही भारत के किसी बड़े स्पेस मिशन का हिस्सा बन सके। इसीलिए स्पेस साइंस सिर्फ साइंटिस्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये हमारे युवाओं के सपनों का भी सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आसमान को सिर्फ देखिए मत, उससे सवाल पूछिए, क्यों तारे चमकते हैं, चांद के अलग अलग रूप क्यों दिखाई देते हैं, ये कैसे बनते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि हम इंसान अंतरिक्ष के बारे में और कितना जान सकते हैं। क्योंकि साइंस की दुनिया में हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा होता है, और शायद यही सवाल किसी दिन किसी बच्चे को साइंटिस्ट बनाएगा, किसी को इंजीनियर और किसी को भारत के अगले स्पेस मिशन तक ले जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे घर में भी है और हमारी पढ़ाई में भी है, हमारी जेब में भी है और शायद हमारे कमरे के किसी कोने में पड़ा हुआ भी है। आप सोच रहे होंगे, भले किस बारे में बात हो रही है? दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ई कचरे की, यानी ई वेस्ट की। ज़रा सोचिए कि आपके घर में कोई पुराना मोबाइल पड़ा है, पुराना चार्जर या फिर काम नहीं करने वाला ईयरफोन, पुराना कंप्यूटर कीबोर्ड माउस या कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक खिलौना। हम अक्सर इन्हें एक कोने में रख देते हैं, है ना, और सोचते हैं कि कभी काम आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यही कभी काम आएगा वाली चीज़ें धीरे धीरे ई कचरे का

हिस्सा बन जाती है। ई कचरा यानी ऐसे पुराने या ख़राब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है या जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर कुछ समय बाद नया फ़ोन, नया लैपटॉप या फिर नया गैजेट, नया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाज़ार में आ जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? या दोस्तों, पुरानी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है और उसके साथ बढ़ता जाता है ई वेस्ट। अब सवाल है कि ई कचरा इतना गंभीर मुद्दा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कई तरह के मटेरियल्स और कुछ हानिकारक पदार्थ भी मौजूद हो सकते हैं। अगर इन्हें सामान्य कूड़े के साथ फेंक दिया जाए या फिर गलत तरीके से तोड़ा जलाया जाए तो मिट्टी, पानी और हवा को नुकसान भी पहुँच सकता है। और सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, ई कचरे को असुरक्षित तरीके से संभालने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए पुराना मोबाइल या फिर कंप्यूटर सिर्फ कबाड़ नहीं है, वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसका सही तरीके से निपटारा बेहद ज़रूरी है। तो अब सवाल आता है कि आखिर इसका निपटान हम कैसे करें? सबसे पहला कदम है दोस्तों, रिड्यूस, यानी ज़रूरत के हिसाब से आप खरीदारी करें। सिर्फ नया मॉडल बाज़ार में आ गया है इसलिए तुरंत पुराना डिवाइस बदलना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर पुराना फ़ोन या फिर लैपटॉप ठीक से काम कर रहा है तो उसे कुछ समय और इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपका दूसरा कदम होगा रीयूज़, यानी उसे दोबारा इस्तेमाल करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे लिए उपयोगी नहीं है लेकिन अभी भी काम कर रहा है तो उसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कदम है रीसाइकल, यानी पुनः चक्रण, यानी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को सामान्य कूड़ेदान में डालने के बजाय उसे आप अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन या फिर रीसाइकलिंग सेंटर तक आप पहुंचा सकते हैं। वहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से उपयोगी मटेरियल्स को अलग करके सुरक्षित तरीके से रिसाइकल किया जा सकता है। और दोस्तों, यहां एक छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराना हमेशा बेकार नहीं होता। कई बार हम किसी गैजेट को सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि उसका नया वर्जन बाजार में आ गया है, लेकिन अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं तो किसी डिवाइस की लाइफ बढ़ा सकते हैं। यानी कम खरीदें, ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़रूरत हो तो रीयूज़ करें और आखिर में सही जगह रिसाइकल भी करें। अब अगली बार जब आपके हाथ में कोई पुराना चार्जर आए या फिर घर में कोई ख़राब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिखे तो सीधे उसे कूड़ेदान में डालने से पहले एक बार सोचिएगा कि क्या इसे रिपेयर किया जा सकता है, क्या कोई और इसे इस्तेमाल कर सकता है, और अगर नहीं तो क्या इसे सही ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुँचाया जा सकता है। दोस्तों, यही छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव ला सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय एनवायरनमेंट की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इतना याद रखिए कि पुरानी टेक्नोलॉजी को घर के कोने में छिपाना समाधान नहीं होता, उसे सामान्य कूड़े में फेंकना भी समाधान नहीं है। सही समाधान रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल ही है। तो इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। तो अब इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये बेहतरीन नगमा।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे विषय की जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब धरती अचानक हिलने लगे तो कुछ सेकंड के अंदर हमारी सारी समझ और तैयारी की परीक्षा हो जाती है। या दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर प्राकृतिक आपदा की, जो होती है भूकंप। जी हाँ दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए कि आप घर में बैठे हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और अचानक आपका पंखा हिलने लगे, खिड़कियाँ खड़कने लगती है और ज़मीन भी हिलने लगे, तो घबराहट होना स्वाभाविक है दोस्तों। लेकिन ऐसे समय में सबसे ज़रूरी है घबराने की बजाय सही कदम उठाना। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भूकंप आता क्यों है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह कई बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से बनी होती है। ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे लगातार गति करती रहती है। जब इन प्लेटों के बीच हलचल होती है और चट्टानों में जमा ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो धरती में कंपन पैदा होता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। कुछ भूकंप इतने हल्के होते हैं कि हमें महसूस भी नहीं होते, जबकि बड़े भूकंप इमारतों, सड़कों और दूसरी स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भारत में कई क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील है, इसलिए भूकंप के बारे में जानकारी और तैयारी दोनों ही बेहद ज़रूरी है।

0: सबसे बड़ा सवाल है कि भूकंप के समय हमें क्या करना चाहिए। तो एक आसान सा नियम याद रखिए, ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। ड्रॉप यानी तुरंत आपको नीचे झुक जाना चाहिए, या फिर अगर आप कहीं ऊपर हैं तो ज़मीन पर आ जाएं। कवर यानी किसी मजबूत मेज़ या टेबल के नीचे जाकर अपने सिर और गर्दन को सुरक्षित रखें। और होल्ड ऑन यानी टेबल या मजबूत सहारे को पकड़ कर रखें, क्योंकि झटकों के दौरान वो अपनी जगह से खिसक सकते हैं। अगर आप घर के अंदर हैं तो खिड़कियों, शीशों, अलमारी और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो गिर सकती है। और सबसे ज़रूरी बात कि भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों, बिजली के खंभों, पेड़ों और दूसरी ऐसी चीज़ों से दूर किसी खुले स्थान पर जाने की कोशिश करें जो गिर सकती है। और अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोक दीजिए और गाड़ी के अंदर ही रहें। जब तक झटके रुक न जाएँ, पुल, बिजली की लाइन या फिर बड़ी इमारतों के पास आप गाड़ी रोकने से बचें। और एक ज़रूरी बात यह है कि भूकंप के बाद झटके रुक जाने का मतलब ये नहीं कि खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। आफ्टर शॉक्स यानी बाद के झटके भी आ सकते हैं, इसलिए क्षतिग्रस्त इमारत में वापस जाने से बचें और स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देशों का आप पालन करें। दोस्तों, इसके बारे में चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे थे भूकंप के कारण और बचाव की। दोस्तों, भूकंप को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तैयारी ज़रूर कर सकते हैं। घर में एक छोटा इमरजेंसी किट ज़रूर तैयार रखें। इसमें प्राथमिक उपचार का सामान, पानी, ज़रूरी दवाइयाँ, टॉर्च या फिर अतिरिक्त बैटरी और ज़रूरी संपर्क जानकारी रखी जा सकती है। परिवार के साथ पहले से तय कर लें कि आपात स्थिति में कहाँ मिलना है और किनसे संपर्क करना है। और हाँ, घर में भारी सामान को इस तरह रखें कि वो आसानी से गिरकर किसी को चोट नहीं पहुँचाए। तो दोस्तों, इतना याद रखिए कि भूकंप आने का इंतज़ार करके तैयारी मत कीजिए। तैयारी आप पहले से रखिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपदा के समय हमारी समझदारी और तैयारी हमारे नियंत्रण में ज़रूर होती है। तो अगली बार जब आप भूकंप की बात हो तो सिर्फ डरे नहीं, सही जानकारी रखने की बात कीजिए, क्योंकि जागरूकता एक ऐसी ताकत है जो मुश्किल समय में हमारी और दूसरों की सुरक्षा में मदद कर सकती है। इसी के साथ आपको फिर से ले चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में और सुनवा देते हैं ये प्यारा गीत।

तो दोस्तों, घड़ी की टिक टिक करती हुई सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। हम फिर मिलेंगे कुछ नई ज्ञान की बातों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, ई कचरे का निपटान जरूर कीजिए। हम अपने दोस्त डिंपल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

युवाणी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चरण से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। शाम के 5:30 में आए सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम बालवाड़ी।

बालवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को अपनी मंजू दीदी का जय हिंद। और सुनाइए बच्चों, आप कैसे हैं? भाई आज तो बहुत ही मस्त, और यूँ कहूँ कि बहुत ही आनंद में होंगे। होंगे क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आज है छुट्टी का दिन, स्कूल नहीं जाना, आराम से उठना।

मौज मस्ती करना है ना बच्चों, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज थी स्कूल की छुट्टी। देखो बच्चों, आज के दिन हमारा ये एक मनपसंद कार्यक्रम होता है बालवाड़ी, और इसका हम सभी को इंतज़ार रहता है। तो शुरू करते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम को, बालवाड़ी कार्यक्रम को। बच्चों ये कहावत आपने सुनी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सुनिए ना बच्चों, बहुत सी बार जब अपन शरारतें करते हैं, शैतानी करते हैं, तो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो ये कह ही देते हैं, कहते हैं ना, अरे भाई पढ़ाई कर ले, कुछ आगे अच्छा हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चों, और इसके अलावा घर में अपने देखते हैं बहुत से अपने भाई बहन भी होते हैं, है ना, गली मोहल्ले के दोस्त भी होते हैं, स्कूल के दोस्त भी होते हैं, सभी हम मिलकर खेलते हैं। और इस जब ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहावत कह ही देते हैं, है ना। तो बच्चों हमें चाहिए कि हमारी, चाहे छुट्टी का दिन हो चाहे कुछ भी हो, निरंतर 1-2 घंटे के बीच में हमें यूँ देख लो कि 1-2 घंटे की पढ़ाई तो हमें करनी ही चाहिए। चाहे स्कूल से होमवर्क मिला हो, जिस दिन होमवर्क नहीं मिला उस दिन आप खुद से अपने जो मुश्किल विषय है ना, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, ये हमें अगर नहीं आती है तो उसमें हमें बार बार बार बार इंग्लिश के जो लेसन है वो पढ़ना चाहिए, मीनिंग याद करने चाहिए, और गणित के जो सवाल है वो हमें बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि पढ़ाई निरंतर जारी रखनी चाहिए। और बात यही खेलने कूदने की, भाई इतना भी नहीं खेलना है कि हम खराब बने, और बिल्कुल खेल को बंद भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास जो है ना, वो बच्चों खेलकूद यानी शारीरिक गतिविधियों से ही होता है। हमें खेलना कूदना भी चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में संतुलन को बनाए रखना चाहिए, है ना। बहुत सी बार हम देखते हैं कि पढ़ाई में तो बच्चा बहुत होशियार हो जाता है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, या उसका पूर्णतः विकास नहीं हो पाता है। ये गलत है ना बच्चों, खेलना कूदना और पढ़ाई दोनों को बैलेंस में रखना चाहिए। बच्चों आपको एक बात बताऊं, हमारे सबसे ज़्यादा झगड़ा किससे होता है हमारे घर में, है ना, बताइए आप। अच्छा मैं बताऊं, चलो मैं बताती हूँ, सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है हमारी भाई बहनों में आपस में, बहुत झगड़ा होता है। आप भी झगड़ते हैं? बिल्कुल झगड़ते होंगे। और जब कोई बात आती है तो शेर भी आप उसी से करते हैं, बहन से करते हैं ना, कोई भी बात हो या कोई अपना राज हो तो अपनी बहन को ही बताते हैं, बहन अपने भाई को बताती है, है ना। एक दूसरे से पक्के दोस्त भी होते हैं, और जब झगड़ते हो तब ऐसा लगता है कि बस हम जैसा दुश्मन तो कोई है ही नहीं, है ना भैया। तो देखिए बच्चों, अभी भाई बहनों के स्नेह का एक बहुत ही प्यारा सा त्यौहार आ रहा है, बताइए आप कौन सा त्यौहार आ रहा है। बिल्कुल सही, यानी रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है बच्चों, है ना, 4 दिन बाद, यानी 28 अगस्त को भाई बहनों के स्नेह का त्यौहार, जिसे नाम दिया जाता है रक्षाबंधन। ये भारत के हर इलाके में मनाया जाता है, हर प्रदेश में ये मनाया जाता है। हाँ, नाम इसका अलग अलग हो सकता है, कोई इसे राखी पूर्णिमा बोलते हैं, है ना, और कोई इसे रक्षाबंधन बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन इनका जो मेन उद्देश्य है, इसका महत्व जो है, वो है भाई बहनों का स्नेह, भाई बहनों का आपस में जो उनका प्यार होता है, वही इसका उद्देश्य है रक्षाबंधन का। देखिए बहनों, ये जो, देखिए बच्चों, ये जो त्यौहार है ना रक्षाबंधन, वो एक खून का रिश्ता और पक्का सुरक्षा चक्र होता है, जबकि दोस्ती चुना हुआ वह बंधन है जिसमें पूरी आज़ादी और बराबरी होती है। दोनों ही रिश्ते अपनी अपनी जगह खास और अनमोल होते हैं। भाई बहन के रिश्ते के त्यौहार का नाम हम कहते हैं रक्षाबंधन है, और उसी में दोस्ती का रिश्ता भी छुपा होता है। इस दिन बच्चों, बहन अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधती है, प्यार का धागा बांधती है, और भाई उसे जीवन भर हर क्षण हर पल सुरक्षा का वादा देता है उसे, और उसे स्नेह और उसके साथ खड़ा रहने का विश्वास दिलाता है कि जब भी बहन के साथ कोई मुसीबत आएगी या कोई ऐसा क्षण आएगा जब वो यूँ कहे कि अपने आप को अकेला कभी महसूस नहीं कर पाएगी, मैं तेरे लिए हरदम तैयार हूँ। वाकई सही बात है बच्चों, भाई बहन का रिश्ता है वो एक अनमोल रिश्ता है, है ना। इसमें लड़ाई झगड़ा, अपने अनुभव बांटना, दोस्ती, कई तरह की चीज़ें शामिल होती है, है ना। बात करते हैं कुछ खून के रिश्ते की, तो बच्चों ये एक ऐसा बंधन है जो जन्म के साथ हमें मिलता है और जिसे चाह

कर भी बदला या तोड़ा नहीं जा सकता है। इसके अलावा बचपन की यादें, एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से जन्म लेना, उसी घर में पलना पढ़ना बड़ा होना खेलना कूदना झगड़ना कुछ ऐसे एक दूसरे के राज जानना, ये सब इस रिश्ते की पहचान होते हैं, है ना भैया बच्चों? बिल्कुल सही है, ये एक पहचान होती है भाई बहनों की। अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो वो भाई बहन कैसे तो लड़ाई झगड़ा भी बहुत ही जरूरी होता है ना, प्यार बढ़ता है। इसके अलावा बिना शर्त के सुरक्षा, चाहे कितने भी अनबन हो, चाहे अगर एक दूसरे से बात भी ना करते हो, फिर भी कहते ना कि खून पुकारता है, मुसीबत आने पर भाई और बहन दोनों एक दूसरे के साथ ढाल बनकर खड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर मुसीबत नहीं आने देते हैं। जब जिसको ज़रूरत होती है वो एक दूसरे के लिए तैयार होकर आगे आ ही जाते हैं। इसके अलावा दोस्ती उनमें बहुत पक्की होती है, कहते ना चुना हुआ परिवार, दोस्त हम खुद चुनते हैं जिसमें साथ हमारी पसंद आदतें और विचार मिलते हैं और इसमें पूरी आज़ादी होती है। इस रिश्ते में कोई खून का दबाव नहीं होता है, पूरी आज़ादी होती है, वे बिना झिझक बातें करते हैं, इसीलिए हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और श्रावण मास की पूर्णिमा को ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और ये त्यौहार इस वर्ष बच्चों 28 अगस्त को आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ये त्यौहार बहुत ही हंसी खुशी के साथ, बहुत ही आनंद के साथ हम ये त्यौहार मनाएं और जब भी बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधे, मैं तो यही कहूँगी भाइयों को कि वो एक अच्छा सा सरप्राइज सा गिफ्ट अपनी बहन को दें, है ना बच्चों? एक अंतर कथा भी मैं आपको बताती हूँ। राखी के बारे में कहा जाता है कि यमराज और यमुना दोनों भाई बहन थे, है ना? यमराज और यमुना को मिले हुए काफ़ी बरस हो गए थे, वो मिले नहीं थे, तो यमुना ने अपनी मन की बात जब गंगा को बताई कि मेरे भाई से मिले हुए काफ़ी बरस हो चुके हैं मुझे और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, जब गंगा के द्वारा ये बात यमराज के पास पहुंची तो यमराज ने तुरंत अपनी बहन से मिलने का निर्णय लिया और अपने बहन से मिलने के लिए वो गए। जब यमुना ने अपने भाई के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा और खूब सारी उन्होंने ढेर सारी बातें करी, तब यमराज ने एक ही वरदान मांगने के लिए अपनी बहन से कहा था, तो बहन ने यही वरदान मांगा कि हर वर्ष प्रति राखी पर भाई अपने बहन के यहाँ राखी बंधवाने जाए, है ना, और जो भाई बहन अपने भाई की राखी बांधेगी भाई उसको सुरक्षा का वादा करे और अंतिम क्षण में यमराज उसको बिल्कुल परेशान ना करें। तो इसी वादे के साथ हम ये चाहेंगे कि हर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएं, हंसी खुशी के साथ वो रहें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें। एक अंतरकथा बच्चों आपने और सुनी होगी कृष्ण और द्रौपदी की। मुसीबत के अंदर जब द्रौपदी थी, दुखी होकर उसने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए और द्रौपदी की लाज बचाई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर उनके एक रक्षा सूत्र बांधा था, तो ये भी कथा है। और एक बार यूँ कहें कि चित्तौड़ की महारानी को जब मुश्किल आई, विदेशी ने आक्रमण किया, तब उसने हुमायूं की राखी बांधकर उनको अपनी रक्षा के लिए भेजा था। बहुत सी ऐसी अंतर कथाएं हैं बच्चों, तो हमें बस एक यही बात जो हमें यूँ कहें कि हमें जहन में रखनी है, हमें ध्यान में रखनी है कि जो भी भाई बहन है वो प्रेम से रहें, स्नेह से रहें, लड़े झगड़ें लेकिन गांठ ना बांधें, है ना बच्चों? बहुत अच्छी सी बात है ये। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

सुना ना बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत, अच्छा लगा ना? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा, है ना? और देखो इसी गीत के साथ आते हैं हम हमारी बातचीत पर। बच्चों, हमारा जो ये मानव शरीर है ना, इसमें कई ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम मतलब जानते ही नहीं हैं, है ना? तो आज कुछ इनके रहस्यों के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे दिमाग और दिल कैसे काम करता है। जानना चाहेंगे ना आप भी? भाई बहुत सी बार इच्छा होती है, बहुत सी बार ये कोतूहल होता है कि दिमाग और दिल, भाई हम बोलते हैं भाई हमारे दिमाग में एक ही प्लान आया, कहते हैं मेरा दिल नहीं माना, मेरा मन नहीं माना, तो ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आज थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। बच्चों, मानव शरीर का हर अंग जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। आँखें महत्वपूर्ण हैं, हाथ महत्वपूर्ण हैं, है ना, कान महत्वपूर्ण, हर अंग का अपनी अपनी जगह उसका बहुत ही महत्व होता है। आँखों से कम दिखने लगेगा तो समस्या, कानों से सुनाई नहीं देगा तो समस्या, सारा स्वास्थ्य हमारा एकदम अच्छा है लेकिन किसी एक अंग ने भी काम करना बंद कर दिया ना, तो समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाती है बच्चों, है ना? हम स्वस्थ होते हैं तभी जब हमारे शरीर के सारे अंग अच्छे से काम कर रहे हो। एक भी अंग ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया तो हम बीमार या कमजोर पड़ जाते हैं, कार्य करने में असमर्थता

महसूस करते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे दिमाग और दिल की, तो बच्चों आज हम कुछ इसी तरह से बात करते हैं कि हमारे शरीर का दिमाग और दिल ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दिमाग की बात करते हैं सबसे पहले बच्चों, तो ये हमारा कमांड सेंटर होता है। ये हमारे शरीर का एक कंप्यूटर है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है ना। और सोचने समझने का फैसला यही दिमाग ही लेता है ना। इसके अलावा सिग्नल भेजना, ये नसों के जरिए हमारे पूरे शरीर के अंगों को संदेश भेजता है जिसके साथ ही हम देख सुन और बोल और चल पाते हैं, तभी कुछ काम कर पाते हैं, है ना। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों दिल की, यानी हार्ट। ये हमारी एक पंपिंग मशीन है, ये एक मजबूत मांसपेशियों से बना हुआ पंप है। इसका काम है खून पहुंचाना पूरे शरीर तक। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक से भरा हुआ खून पहुंचाता है। भावनाओं का एहसास करवाना, असल भावनाएं दिमाग में पैदा होती है। ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, आज हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये विचार दिमाग में पैदा होते हैं लेकिन इनसे पैदा होने, विचार पैदा होने के बाद में जो संवेग होता है, खुशी होना, डर लगना, दिल की धड़कनें तेज होना या इन्हें महसूस कर पाना, ये दोनों, ये सभी भावनाओं से ही ये अपने दिल से ही महसूस किए जा सकते हैं। दिल खुद नहीं सोचता है, उसे धड़कन तेज कम और काम करने के लिए दिमाग से लगातार सिग्नल मिलते रहते हैं। अन्य भावनाएं महसूस करने और अन्य सभी के लिए दिमाग से सिग्नल मिलते रहते हैं, है ना बच्चों। ये हुई दिल और दिमाग के काम करने की स्थिति, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना बच्चों। इसके साथ ही हम चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं कि प्यारा सा गीत।

इसके साथ ही बात बच्चों हम आते हैं हमारी बातचीत पर। बच्चों हम बात कर रहे थे अभी मानव शरीर की। मानव शरीर में कई तरह के संवेग भी पैदा होते हैं बच्चों, है ना। दया, स्नेह, प्रेम भाव, एक दूसरे की मदद करना, मिलनसार होना, डरना, खुशी होना, ये सारे संवेग होते हैं, है ना। इसके साथ साथ बुरे संवेग भी आते हैं, क्रोध करना, गुस्सा करना, मारपीट करना, झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें। इन्हीं संवेगों के द्वारा ही हमारा व्यवहार बनता है ना बच्चों। तो हमें चाहिए अच्छे अच्छे संवेग जो है उनको हमारे जहन में जगह दें और उन्हीं का पालन करें ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। ऐसे ही एक प्रमुख व्यक्तित्व वाली महिला थी बच्चों, मदर टेरेसा। उनमें दया की भावना, है ना, बेसहाराओं की सेवा करना, है ना, ये इस तरह के उनमें बहुत ही यूँ कहें कि मानवीय गुणों की भरपूरता थी। तो इनके बारे में बात करते हैं हम, मदर टेरेसा। इनका जन्म बच्चों 26 अगस्त 1910 को हुआ था, जिन्हें कलकत्ता की संत मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अल्बेनियाई भारतीय कैथोलिक नन थी जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक भी थी। इनका लालन पालन बच्चों एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक परिवार में हुआ और 18 वर्ष की आयु में ही ये आयरलैंड चली गई थी। सिस्टर ऑफ प्लोरेंटो में शामिल हो गई थी बच्चों और इसके बाद में वो भारत आ गई और अपने जीवन का अधिकांश समय जो है उन्होंने भारत में ही बिताया। इन्होंने अपने जीवन में धर्म का प्रचार प्रसार करना, बेसहारों की मदद करना, है ना, दीन दुखियों की मदद करना, बीमार की सेवा करना, यही इनका जीवन का उद्देश्य इन्होंने अपना रखा। बच्चों 4 सितंबर 1916 में कैथोलिक चर्च द्वारा उन्हें संत की उपाधि दी गई। अब उनकी पुण्यतिथि 5 सितंबर को है और इन्हें एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में ही लगा दिया था, है ना। तो बच्चों देखो ना, इन्होंने निर्मल हृदय की स्थापना की 1952 में। ये एक ऐसी संस्था थी जो बेसहारा लोगों को या बीमार लोगों की सहायता करती थी, उनकी सेवा करती थी। निर्मल शिशु भवन इन्होंने बनवाया, इसकी स्थापना की। इसमें जो अनाथ बच्चे होते थे उनका पालन पोषण किया जाता था। कुष्ठ रोगियों की सेवा करना ये इनका मुख्य उद्देश्य था और वैश्विक विस्तार यानी पूरे विश्व में इस शाखा का प्रचार प्रसार इन्होंने किया। इन्हें कई सम्मान और उपलब्धियां भी उपाधियां भी दी गई थी।

बालवाड़ी ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिन्हवी चरण से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6 बज रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यावहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है।

0: उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
1: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरईसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 में हैं, आज सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, आवाज़ कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति की, संगीत आर डी बर्मन का, जावेद अख्तर की शब्द रचना।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, शाम के 6:20 में हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम माटी के स्वर।

0: नमस्कार, संस्कार संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: आगी रे, आगी रे, आगी रे, ये चूलो बड़

0: इस लोकगीत के साथ ही करके माटी के स्वर यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं FM 103.7 MHz पर। शाम के 6:28 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ग्राम केरा कछार से हूँ। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1447 पर कॉल करें।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक ली। अधिकारियों को जन सहभागिता के साथ काम करने के निर्देश। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों से कांवड़ लाने का सिलसिला जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक

0: थोड़ा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: गौरतलब है कि 2023 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश था। बीती 18 जुलाई को देश की एक निजी कंपनी ने भी पहला विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत की अंतरिक्ष शक्ति को और ऊंचाइयां प्रदान की है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। वहीं अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर जन सहभागिता के साथ काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर जयपुर में समीक्षा बैठक की। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में 12 वफात, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े त्योहार और पर्व आ रहे हैं। ऐसे में आमजन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे छोटी बड़ी जानकारी समय पर मिल सके और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत सहित उच्चाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान के बीच रत्न आभूषण सहित अन्य उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विशेष सुविधाएं विकसित कर जापानी कंपनियों को अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। आज जयपुर में जापान के प्रतिनिधिमंडल के साथ उद्योग और निवेश को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और जापान के बीच वर्षों पुराना नाता है। श्री शर्मा ने कहा कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिलकर तकनीक और निवेश के साथ रत्न आभूषण व्यापार को और आगे लेकर जाएं। इससे व्यापार बढ़ने के साथ ही रोजगार के भी ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान की 180 कंपनियां राजस्थान में काम कर रही है। बैठक में जापान की कोफू सिटी मेयर युईची हिगुची ने राजस्थान सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों और यहां उपलब्ध निवेश अवसरों की सराहना की। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। श्री मेघवाल ने कहा कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनाओं को एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए अधिक समन्वित ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि 1857 के विद्रोह से जुड़े वाल्मीकि समुदाय के नायक गंगू बाबा की प्रेरणा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ने लगी है। भाजपा और कांग्रेस सहित प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। 309

0: स्थानीय निकायों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। प्रत्याशी 27 अगस्त से 31 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में महज 3 दिन का समय शेष रहते प्रमुख पार्टियों का टिकट लेने के लिए प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता है, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं। कल श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। इस मौके पर प्रदेश भर में शिवालयों और मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उल्लास देखा जा रहा है। तड़के से ही शुरू होने वाला बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे कल अपने पूरे परवान पर रहेंगे। पवित्र सरोवरों से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्राएं भी जोर शोर के साथ चल रही है। झुंझुनू जिले के लोहारगल स्थित प्राचीन कुंड से जल शेखावटी क्षेत्र के साथ साथ दूर दराज के मंदिरों तक पहुंचाने के लिए कांवड़िए पहुंच रहे हैं। जयपुर के गलता सरोवर, बीकानेर के श्रीकोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम के जल को भगवान को अर्पित करने को लेकर लोगों में उत्साह बनाया हुआ है। नागौर में आज निकाली गई कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शक्कर तालाब से शुरू हुई यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। आमजन ने सरोवर का पूजन कर जल संरक्षण की शपथ ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कांवड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक, दिल्ली गेट, एयर रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कांवड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन, भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल, आकाशवाणी समाचार, नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज मेवाड़ के एकलिंगजी महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इससे पहले उदयपुर दौरे में राज्यपाल ने मताथा स्थित मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोरमा का अवलोकन किया। राज्यपाल ने बप्पा रावल को भारतीय इतिहास का महान योद्धा बताते हुए सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राजसमंद जिले के पिपलांत्री गांव में आज बेटियों ने पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान लोगों ने पौधों की आरती उतारी और उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र में हाल ही में जन्मी बेटियों की माताओं ने कन्याओं के नाम पौधे भी लगाए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पाली में शिक्षा विभाग और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से ब्लू प्लेनेट प्रश्नोत्तरी और कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले भर के विद्यार्थियों ने पर्यावरण, पृथ्वी और जल संरक्षण जैसे विषयों पर अपनी भावनाओं को कला के जरिए व्यक्त किया। विजेताओं को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉक्टर मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 28 अगस्त तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने भारत में विश्वास जताया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रमुख कंपनियों के सीईओ से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जनसहभागिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। भाजपा और कांग्रेस सहित राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज हुआ। और श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर कल शिवालयों में भोलेनाथ के अभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं में उल्लास। पवित्र सरोवरों

0: से कावड़ लाने का सिलसिला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले की चिट्ठी की शुरुआत नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। राज्य निर्वाचन आयोग और नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही प्रतापगढ़ जिले के नगर परिषद और सभी नगर पालिका क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कुछ श्रेणी के लाइसेंसधारी शस्त्रधारियों से हथियार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित हथियार निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। आदेश का उल्लंघन होने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव का काम पूरा होने के बाद हथियार वापस किए जाएंगे। चुनाव को लेकर जिले के नगरीय क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। 19 अगस्त से 22 सितंबर की मध्य रात्रि तक लागू निषेधाज्ञा के तहत बिना अनुमति हथियार लेकर चलने और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गई है। बिना पूर्व अनुमति के सभा, धरना, रैली, जुलूस और प्रदर्शन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव प्रचार में पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग, लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए भी निर्धारित अनुमति जरूरी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी और डीजे पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग देने की अपील की है। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर शुभम चौधरी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी दलों से नियमों का पालन करने और चुनावी गतिविधियों के लिए आवश्यक अनुमतियां लेने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय समारोह गरिमा और उल्लास के साथ आयोजित हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के हॉकी मैदान में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब समाज के हर व्यक्ति को सम्मान, अधिकार और आगे बढ़ने के अवसर मिले। समारोह में परेड, मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण भी हुआ। इसी कड़ी में राजकीय कन्या महाविद्यालय में एक शाम स्वतंत्रता और लोकतंत्र के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को मतदाता जागरूकता, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। स्वीप एम्बेसडरों ने छात्राओं को जागरूक किया। पिछले दिनों हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा रैली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अभियान के तहत नगर परिषद परिसर में जिला स्तरीय तिरंगा प्रदर्शनी लगाई गई। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। यहां तिरंगे के इतिहास, स्वरूप और राष्ट्रीय महत्व की जानकारी दी गई। अधिकारियों और आमजन ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। धमोतर पंचायत समिति में तिरंगा मेले के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए, जिससे देशभक्ति के साथ ग्रामीण महिलाओं की आजीविका और आत्मनिर्भरता का संदेश भी सामने आया। प्रतापगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में एक जिला एक उत्पाद थेवा विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। युवाओं को ODOP, MSME, एक्सपोर्ट पॉलिसी तथा विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना और अन्य स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिले के विद्यालयों और नर्सिंग महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों को नशे के शारीरिक और मानसिक और आर्थिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई। विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाने की पहल भी की जा रही है। सावन के महीने में जिले भर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और सोमवार के दिन शिवालयों में जलाभिषेक और सहस्त्र घट के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। श्रावण के पहले सोमवार को प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भगवान शिव का अभिषेक कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और जनकल्याण की कामना की। इसी के साथ प्रतापगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: पहलियां आज री खास खबरां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप्स भारत माए विश्वास जतायो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे प्रमुख कंपनियां रा सीईओ सू चर्चा करी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका प्रदेश माए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेट समीक्षा बैठक ली अहलकारा ने जन सहभागिता रे साथे काम करने रा हुकुम दिया प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बढ़ी भाजपा और कांग्रेस समेत राजनीतिक दला माए उम्मीदवार ने लेर मंथन तेज व्यो और श्रावण महीना रा अंतिम सोमवार माथे काले शिवालय माए भोलेनाथ रा अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए उछास पवित्र सरोवर सू कावड़ लाने रो सिलसिलो जारी है। समाचारों के साथ है मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो है कि अंतरिक्ष खेतर रा स्टार्टअप सरकार माए आपरो विश्वास जतायो है। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रे मौके माथे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष खेतर रे स्टार्टअप रे मुख्य कार्यकारी अहलकारा रे साथ चर्चा करी प्रधानमंत्री रोजाना जतन करे और अंतरिक्ष खेतर रा एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने री अरज करता हुआ कयो कि एड़ो अनुकूल माहौल बनायो जानो चाहिए जिनसू दुनिया भर रा लोग अंतरिक्ष खेतर माए आपरो करियर तलाशने खातिर भारत ने पसंदीदा गंतव्य रूप माए देखे।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है तो हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: ध्यानजोग है कि 2023 माए आज ही रे दिन भारतीय अंतरिक्षयान चंद्रयान 3 रे चंद्रमा रे दक्षिणी ध्रुव माथे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग री याद माए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनायो जावे है। आ उपलब्धि हासिल करने वालों भारत दुनिया रो पहलो देश हो। बीती 18 जुलाई ने देश री एक निजी कंपनी भी पहलो विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च कर रही अंतरिक्ष शक्ति ने और ऊंचाइयां माथे पहुंचायो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस माथे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह देशवासियां ने शुभकामनावां दी। श्री राधाकृष्णन सोशल मीडिया पोस्ट माए कयो कि अंतरिक्ष अन्वेषण माए भारत री उल्लेखनीय उपलब्धियां देश री वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार री भावना ने आगे बढ़ाने रे पक्के संकल्प रो प्रमाण है। प्रधानमंत्री आपरे संदेश माए कयो कि नूवी वैश्विक व्यवस्था माए भारत लगातार आपरे अंतरिक्ष क्षेत्र रो विस्तार कर रियो है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह कयो कि चंद्रयान 3 री ऐतिहासिक उपलब्धि रे साथ ही भारत अंतरिक्ष रा क्षेत्र माए अग्रणीय देशा माए भेड़ो वैग्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आवता त्योहारा ने देखता थका अहलकारा ने प्रभावी कार्य योजना बनार जन सहभागिता रे साथे काम करने रो कयो है। मुख्यमंत्री प्रदेश माए कानून सुरक्षा और यातायात व्यवस्था ने लेर जयपुर माए समीक्षा बैठक करी। श्री शर्मा कयो कि आवण वाला दिना माए बारा वफात रक्षाबंधन जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जड़ा मोटा त्योहार और पर्व आ रिया है। एड़ा माए आम जन रे साथे आपसी समझ पक्की करी जावे जिनसू छोटी बड़ी जानकारी बकत माथे मिल सके और जरूरी कार्रवाई पक्की करी जा सके। बैठक माए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा गृह महकमारा अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत समेत उच्चाधिकारी मौजूद रिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कयो है कि राज्य सरकार राजस्थान और जापान रे बीच रत्न आभूषण समेत दूजा उद्योगों रे विकास खातिर रोड मैप बनार काम कर रही है। वणा कयो कि खास सुविधावां विकसित कर जापानी कंपनियां ने अनुकूल माहौल मुहैया करवायो जा रियो है। आज जयपुर माए जापान रे प्रतिनिधि मंडल साथे उद्योग और निवेश ने लेर आयोजित बैठक माए मुख्यमंत्री कयो कि राजस्थान और जापान बीचे बरसों पुराणो नातो है। श्री शर्मा कयो कि जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन

0: और यामानाशी ज्वेलरी एसोसिएशन मिल तकनीक और निवेश रह साथ है रत्न आभूषण व्यापार ने और आगे लेर जावेला इनसू व्यापार बधने रह साथ है ही रोजगार रा भी बत्ती उबत्ती मौका बनेला। मुख्यमंत्री बतायो कि जापान री 180 कंपनियां राजस्थान माए काम कर रही है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो कि सफाई रे काम माए मानवीय श्रम ने कम करने और मशीना रे बत्ती इस्तेमाल री जरूरत है। आज नवी दिल्ली माए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग रे थापना दिवस जलसा माए वणा कहो कि सफाई कर्मियां रे खातिर सुरक्षा उपाय सुरक्षा उपकरण प्रशिक्षण और स्वास्थ्य बीमो जरूरी है। श्री मेघवाल कहो कि बीमा और मुआवजे से जुड़ी योजनावां ने एकीकृत करने और सफाई कर्मचारियों रे कल्याण खातिर समन्वित ढांचो तैयार करने री जरूरत है। बना घोषणा करी कि 1857 रे विद्रोह से जुड़िया वाल्मीकि समुदाय रा नायक गंगू बाबा री प्रेरणा ने जन जन ताई पहुंचाने रे लखस से एक राष्ट्रीय स्मारक विकसित करो जावेला। ए खबर आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रिया हो। प्रदेश माए नगर निकाय चुनाव ने लेर सरगर्मियां बधन लागी है। भाजपा और कांग्रेस समेत प्रमुख राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार ने लेर मंथन तेज कर दियो है। 309 स्थानीय निकायां माए दो चरणा माए वोट डालिया जावेला। पहले चरण रो मतदान 9 सितंबर ने हुवेला वठी ने 11 सितंबर ने दूजे चरण री वोटिंग वेला। प्रत्याशी 27 अगस्त सु 31 अगस्त ताई नामांकन पानो दाखिल कर सकेला। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने माए महज 3 दिन रो वक्त बाकी रह्यो है। प्रमुख पार्टियां रा टिकट लेने खातिर प्रत्याशी जोर शोर से दमखम दिखा रिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह बतायो कि आ चुनाव माए 1,44,00,000 से बत्ती वोटर आपरे मताधिकार रो प्रयोग कर सकेला। जयपुर नगर निगम माए सबसे बत्ती मतदाता है बठीने बूंदी रे इंद्रगढ़ माए सबसे कम वोटर है। काले श्रावण मास रो अंतिम सोमवार है। इन मौके माथे प्रदेश भर माए शिवालया और मंदिरा माए भगवान भोलेनाथ रे अभिषेक ने लेर श्रद्धालुआ माए खासो उचास देखो जा रियो है। तड़के सु ही बम बम भोले और हर हर महादेव रा जयकारा काले आप रे पूरे परवान माथे रेवेला। पवित्र सरोवरा सु पानी लार भगवान शिव ने चढ़ायो जावन खातिर कावड़ यात्रा मां भी जोर शोर रे साथ है चाल रही है। झुंझुनू जिला रा लोहारगल थापित प्राचीन कुंड सु पानी सेखावाटी खेतर रे साथे साथे दूर दराज सु मंदिरा ताई पहुंचावन खातिर कावड़िया पूग्य रे। जयपुर रा गलता सरोवर बीकानेर रे श्री कोलायत और पुष्कर सरोवर और बेणेश्वर त्रिवेणी संगम रे जल सु भगवान शिव रे अभिषेक करण ने लेर लोगा माए उछास बनेड़ो है। नागौर माए आज निकाली जी कावड़ यात्रा माए हजारां री तादाद माए श्रद्धालु भेड़ाव्या। तालाब सु शुरू हुई यात्रा रो जगह जगह स्वागत करियो गयो। आमजन सरोवर रो पूजन कर जल संरक्षण री शपथ भी ली।
1: सरोवर पूजा के बाद सुबह शुरू हुई यात्रा में श्रद्धालु कावड़ लेकर शामिल हुए। यात्रा विजय वल्लभ चौक दिल्ली गेट ए रोड और गंध चौक होते हुए शिवबाड़ी मंदिर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं ने भगवान महादेव का जलाभिषेक किया। मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए और शहरवासियों ने पुष्प और शक्कर कावड़ियों का स्वागत किया। इस दौरान जीवंत झांकियों ने आकर्षण बढ़ाया। मंदिर पहुंचने पर संत महात्माओं के प्रवचन भस्म आरती और धार्मिक कार्यक्रम हुए। श्यामलाल आकाशवाणी समाचार नागौर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज मेवाड़ रा एकलिंग जी महादेव मंदिर माए दर्शन कर पूजा अर्चना करी। इनसू पहले उदयपुर दौरे माए राज्यपाल मथाता थापित मेवाड़ रा संस्थापक बप्पा रावल री प्रतिमा माथे पुष्पांजलि अर्पित कर पैनोरमा रो अवलोकन करियो। राज्यपाल बप्पा रावल ने भारतीय इतिहास रो महान योद्धा बताता तका सगड़ा ने वाणे जीवन सु प्रेरणा लेवन रो हेलो करियो। राजसमंद जिले रा पीपलात्री गांव माए आज बेटियां पेड़ा ने राखी बांधर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दियो। इन रे चालता लोगा पौधारी आरती भी उतारी और वाणी सुरक्षा रो संकल्प भी लियो। कार्यक्रम माए क्षेत्र माए हाल ही माए जन्मी बेटियां री मातावां ने कन्यावां रा नाम भी पौधा लगाया और कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर और स्थानीय जनप्रतिनिधियां समेत बड़ी तादाद माए ग्रामीण मौजूद रहा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहो है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत रे लखस ने हासिल करने और भारत ने 45 अरब डॉलर री अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनावण माए महत्ती भूमिका निभावेला। आज अहमदाबाद माए तीजे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जलसा माए वणा कहो कि अंतरिक्ष क्षेत्र रा सुधारा सु स्टार्टअप और उद्योग जगत खातिर मौका बध्या है। कार्यक्रम माए इसरो अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रा निदेशक वी एन राव भी मौजूद था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया स्वस्थ जीवन शैली साइकिल चला

हम आकाशवाणी नागौर के चिन्मी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, शाम के 7 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: पशु बीमार हो जावे तो देखो दूध में भी है सारो कुछ है, जबकि यहाँ पर पशु माते यहाँ पर निर्भर रहवा और बीर माते निर्भर रहता रहता आप अगर कोई भी बीमार हो जाओ तो ठीक कौन रहे। तो आंपा ने सबू पहली आ चीज़ ध्यान रखनी है कि आंपा का जगह पशु है बांकर रोग प्रबंधन है जको आंपा ने करना बहुत जरूरी है। आंपा का नज़दीकी डॉक्टर है बाहू सलाह लेनी जरूरी है और सलाह के साथ साथ आंपा के जकर टीका है टीकाकरण है वो भी करवाना चाहिए। और बारिश के मौसम के महीने आंपा का जगह बाड़ा है या निरुच्चारा है तो आंपा ने सूखे के महीने आंपा के पशुओं ने बांधना चाहिए गिल्ले में कीचड़ में बटन नहीं बांधना। और अभी बारिश के बाद में देखो कि गाँव के महीने आंपा के भाड़ा के महीने सबू ज़्यादा जबकि परेशानी रहे पशुओं के बाहर रहे माखियाँ की और मच्छरों की। तो आंपा ने श्याम पौर के ध्यान करना चाहिए कि जट आंपा रहे भाड़ो है पशु बांधुड़ा है बीज गया आंपा ने धुओं कर परो और भी धुएं है जो कि माइकियां और माचर उड़ाना चाहिए ताकि पशु है जो को आराम चर भी सके और शाम के टाइम आराम बैठ भी सके। और इस साथ साथ ही अभी देखो कि आलो कचरो है यानी कि आप देख सकें कि हरो चारो हरे चारे के साथ साथ कहीं है कि कई बेला है या कचरो भी माते जीवाणु कीटाणु लागुड़ा रहे तो बे भी पशुओं ने बीमार कर दिया गिरा करे। तो आंपा ने आज ध्यान रखनी चाहिए कि बे आंपा ने झड़का परा और हरे चारे के साथ साथ आंपा के पशुओं ने टाइम टाइम पर सूखो चारो भी देना चाहिए। भी यूं कहीं है कि जकी लगातार आंपा हरो चारो देवा बी में भी बीमारी को कारण रहे तो आंपा ने फोर फोर आंपा के पशुओं ने है जो चारे की और व्यवस्था करनी चाहिए। काम की बात तो आगे कर रही तो भी यूं पहली सुना काम की बात।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई मिला तुरंत पजेशन हुआ समाधान साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
4: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
5: ब्रो, ये फटा है।
6: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
7: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
5: वाओ, नया नोट मिलेगा।

0: करा और बुलाप्रार वेणसु हैजी को भांत भांतरी जानकारियां लेपरी और आप तई करिया करा पूगती। आज देखो कि चौपाल माते न्योत्या हाँ आपा गांव फड़ोदरा सुरेश जी फड़ोदा ने आप रो हेंगू। पहली तो सुरेश जी राम राम सा स्वागत है।
1: राम राम सा।
0: अब सगलों पहली तो आपने वही सवाल करा के जी आपन थोड़ी देर पहली बातचीत हुई के जीरो बजट खेती काई है, इन्हें कुण कर सके किया काई हुए इरे बारे में ना आप है जी को छो कितना प्रकार डालो।
1: राम राम सा और आकाशवाणी सुनिया सगला किसान भाई ने मारा राम राम। जीरो बजट खेती या प्राकृतिक खेती जकी आप इन कहवा आज के टाइम के मायने बहुत जरूरी चीज होगी और इन्हें सगला किसान भाई ये जगह बहुत आसान तरीके कर सके।
0: अच्छा
1: इमें अतो कोई विशेष जानकारी की इमें जरूरत कोनु है, थोड़ी किसान भाई ने मेहनत आपकी लगानी पड़ेगी मायने।
0: बिल्कुल
1: और आज नहीं तो आने वाला टाइम में आ सब किसाना की मजबूरी हो जाए, क्योंकि अपन जकी रासायनिक खाद और दवाई दारू खेत में ना का भी अपनी जमीन की जकी उर्वरकता शक्ति है बा दिनों दिन हर साल है जकी कमजोर होती हो रही है। और जकी फसल आपा लीवा उत्पादन तो भी को ज्यादा हुआ है, पर भी फसल में जका पोषक तत्व होना चाहिए। बे आज आपा का जगह

0: करा और बुलाप्रार वेणसु हैजी को भांत भांतरी जानकारियां लेपरी और आप तई करिया करा पूगती। आज देखो कि चौपाल माते न्योत्या हाँ आपा गांव फड़ोदरा सुरेश जी फड़ोदा ने आप रो हेंगू। पहली तो सुरेश जी राम राम सा स्वागत है।
1: राम राम सा।
0: अब सगलों पहली तो आपने वही सवाल करा के जी आपन थोड़ी देर पहली बातचीत हुई के जीरो बजट खेती काई है, इन्हें कुण कर सके किया काई हुए इरे बारे में ना आप है जी को छो कितना प्रकार डालो।
1: राम राम सा और आकाशवाणी सुनिया सगला किसान भाई ने मारा राम राम। जीरो बजट खेती या प्राकृतिक खेती जकी आप इन कहवा आज के टाइम के मायने बहुत जरूरी चीज होगी और इन्हें सगला किसान भाई ये जगह बहुत आसान तरीके कर सके।
0: अच्छा
1: इमें अतो कोई विशेष जानकारी की इमें जरूरत कोनु है, थोड़ी किसान भाई ने मेहनत आपकी लगानी पड़ेगी मायने।
0: बिल्कुल
1: और आज नहीं तो आने वाला टाइम में आ सब किसान की मजबूरी हो जाए, क्योंकि अपन जकी रासायनिक खाद और दवाई दारू खेत

0: आप खरीद लिया वहां जरा तो आपां भी महंगी पड़ी। तो जैविक खेती में सब पहलो काम आप नो करनू पड़े, अपन पशुपालन साथे साथे करनू बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, वो तो देखो किया भी करे सा के खेती रो डावड़ो।

0: बीन तरीके हुई आपनों मुंडा पैजो को बढ़ सके।
1: सुरेश जी बारानी खेती री बात करी जी कांग मायने ज्यादातर खरीफ री फसलां, रबी री फसलां रे मायने आपा यदि चमाक जीरो बजट खेती इरे बारे मायने कोई रीगी बाता आप संक्षिप्त मायने बताई दो।
0: रबी की फसल में किसान भाया जहाँ गेहूं है रायडो है अगर आपा आंख मायने जैविक खेती की प्रैक्टिस करनी चाह मार आपा अगर सिंचाई को साधन है तो आपा सिंचाई को जो को पानी है भी पानी के साथ जितनी बार भी सिंचाई करा बीती वार ही आपा जो को जीवामृत बनायो भी जीवामृत ने अगर आपा गोल ने ताजो छान कपड़े हूं ताकि आपा का फुहार आया या जगह चोक नहीं हुए तो बिन अगर आपा वेंचुरी के माध्यम अगर सिंचाई के साथ जीवा जितनी बार भी सिंचाई करा कोई फसल में तो बिका बहुत बढ़िया परिणाम है। आप पूरे खेत में नहीं तो आप 1 बीघे में 2 बीघे में कर देखो और इनका जबकि आप खाद ना का यूरिया डीएपी बहु बहु भी दुगुना तिगुना ज्यादा बहुत बढ़िया प्रभाव है।
1: अच्छा अबे यहाँ है चालता चालता मतलब ए

0: भाई थोड़ी हमारे की टेंशन में आ गई, तू बोल दे तो।
1: संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे।
0: आओ हो तो भाई को पूछो, फोकामी क्या पूछे
1: भाई, आज कहीं उड़ा लिए
2: ऑन ग्राउंड की हुई लड़ाई।

0: राम राम सा।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अप्रोन्याओं भिजो को के निर्गाओं भिजो।
0: नाम कान्हा राम, गांव गगवाना।
1: आओ हो कांजी तबियत पानी क्या ने थोड़ी
0: हो? तबियत पानी अब ठीक है पता?
1: अरे वाशिया वा मैं पानी के रोके गांव का नहीं हो।
0: आज क्या निकाल दो बता दे दे।
1: अरे राम जी करी की मंडियो नहीं हो? ए और गांव में परिवार में हगले क्या नहीं हो?
0: अरे जोर का करता है।
1: ए धानी प्रोग्राम के योग लगे को के नहीं बजाओ।
0: प्रोग्राम बड़ो गजब लगे लेकिन रुपए राम जी को फोन कॉल लगे धानी वाला बे कुत्ते करता है।
1: ए कोके तो कह दिया करो भी फोन करो टेम से जिन लागी बजियान क्या लागियो?
0: अब बन को कौन लागे मारो लागे चल के थारो जीव लागे मैं काका हूँ धर्मे लो करीड़ो मारो टेट पे धक्का दिलाई दिया नका उस पर।
1: ओ भाईयो ए मारी पोती आवड़ी थोड़ी राजा आवड़ी करो नियो।
0: अरे करो मैं तो उत्तर
1: ए लूणी भाईयो आरी राम राम राम राम राम। ए भाई तू खेत में उबी है के भाई बात करने भोज माते
2: आओ आओ काका इतना जोरू कने बोलो
1: है आ मारी बेजा थारू बात करनी चाहू ताका ने राम भाई बोलो हेलो
2: हेलो।
0: ओहो बेटो आयो कर दे लून को।
2: हाँ पगे लागू दाजी यो।
0: ओ खुश रहो बेटा खुश रहो एक माज पोती है तेरी करी बेटी आ तारू बार मिल पड़े।
2: अरे कराई तो कराई तो।
3: हेलो
2: भाई थारू कोई नाम है?
3: नाम है रवीना। काई करो लूनी भाई?
2: रवीना भाई तू पढ़ लिख कर काई बना ली है?
3: बनन की तैयारी है।
2: मास्टर बना जन चोखा पढ़ाई जे टाबरन।
3: हाँ पढ़ा तो हाँ मैं चोखा आप देखो।
2: ए तू दादी को केवड़ो करे कहीं है?
3: जना ही करूँ मैं तो।
2: आ दाजी बात करा देगा मैं पूछूं दाजी ने
3: ये बात ही करो।
0: हाँ भाई
2: आ पोती के मैं केवड़ो घणो ही करूं ताकि सेवा करे कहीं
0: उन्नी रोटियां गल ले।
2: हाँ शब्दा मारिया मर गया शब्दा छोड़ियो राज।
0: हाँ।
2: जिन जिन शब्द बिचार यार मारा सरिया काज तो थे बताओ शब्द किर किर लग गया जका राजा राज छोड़ दियो।
0: राजा भरतरी और राजा तारे गोपी चंद राज छोड़ दियो।
2: अरे वास मारो नाम अमर उग्यो नी?
0: अमर नाम उग्यो देख ले।
2: आज कई उड़ोला थारी पसंद बताओ।
0: हाँ तू अपना उम्र उम्र की लड़ाई करा दे मांगे
2: काका आयो। आना बूढ़ा ने तो खिलौना चाहिए उंदर उंदरी हुनाई दो।
1: ए यो जा मारी बेटी।

0: राम राम काका।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अप्रोन्याओं भिजो कोकेनीर गांव भिजो।
0: मारा नाम गोपाल नाम जाखड़ गांव बोशरी।
1: हो गोपाल भाई बोशरी में कोई करो।
0: कहीं कोकरन बैठा यहाँ।
1: ए बेटा बेटा बार ज्ञान पड़ी मारे बेटा समुद्रांग का नीर सूखे की कौम दिन जो करो कौन करो
0: काम निनान पर कर लियो और कहीं करो पहले यहाँ
1: आ जाओ। हो ऐसा का कैसी क्यों
0: धान ठीक है।
1: अरे करी राम जी मत ने जोरा को मैं हूँ ही हो देखो हालती हावने भादू जा लीजिए करी राम जी।
0: हाँ
1: एक काका एक सवाल करता हूँ उसका जुबा बिनाओ।
0: हाँ बताओ।
1: जो बोलता नहीं है फिर भी खबरें देता है क्या होता है
0: फोन।
1: फोन तो बोलता है लुनके
2: काका।
1: भाई को पूछा हमने जो बोलता नहीं फिर भी खबरें देता भाई कहता फोन होता है फोन तो बोलता नहीं है।
2: अब हर दिन काका हाथ में वही रहे वही दिस वही याद आवे।
1: तो तुम भाई से बात करो पंडे क्या है और ये खेत में निदान कर लिया है तो कहो हेलो।
2: हेलो
0: राम राम सा लोनी भाई।
2: राम राम सा राम राम सा भाई जी काके आड़ी पूछी बिरो अर्थ फोन नहीं काका कहीं अखबार हुए कहीं आओ।
1: ए बिल्कुल सही कहती अखबार होता जो बोलता नहीं फिर भी खबर देता नहीं है।
2: ते पढ़े एडाई करी कहीं।
0: हाँ दसवीं में।
2: अजू पढ़ो छोड़ दी
0: पढ़ा
2: पढ़ो जने ना एडे दो बताओ जके मैं ये कहवे के ना अपन सही बोलना चाहिए मीठो बोलना चाहिए
0: ध्यान को नहीं
2: काका था उड़ाई
1: तो आज मीठो बोलनो जी जे मुझे तो शू बोले।
2: हाँ सही काका तो भी मीठो बोले मेरी कीमत हुए खारो बोले वो किने अकरो नहीं लगे।
1: आज तो हम ऐसा कहते तुम हुनता हो तो
2: हाँ
1: ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए हाँ। को शीतल के वेर आपू ना शीतल होए।
2: अरे वाह वाह काका कई बात की काका बोली कितनी मीठी वे बोली रहा देखो अगला लोग है भीड़ लगुड़ी है फोन लगा के काके
1: और भाई को पूछो फोगम में क्या पूछे
2: भाई जी आज कहीं होना ला
0: साउंड सुना दो।

0: राम राम काका जी पगे लगू
1: ए जीव दारो राम जी थोरी लंबी उम्र घरे अंधन का भिंडार बिरी ओ प्रोनियो बीजो खोके नीर गांव बीजो
0: अनूप सर तहसील वादरा गांव अनूप सर जो जी गजानंद शर्मा
1: आओ हो गजानंद जी अनूप सर में हगले क्या नियो
0: ए एकदम रेडी बैठे काका जी
1: ए मारे प्रोग्राम के योग लगे थोनी हो
0: थारो प्रोग्राम इतो जोरदार लगे काका जी ती प्रशंसा करा देती थोड़ी है काका
1: अरे वाह शिवा जी जोरो खे दियो और बेजो खेती बाड़ी क्या नियो बनियो
0: खेती बाड़ी काका बड़ी है लेकिन अब खेती बाड़ी में मेघ की जरूरत है काका जी।
1: ए देखो सावन उतरे आगे भादुओ लागे अभी देखो राम जी घरे ले हो राम जी मां ने जो राखो
0: हां ने सो रखा काका जी।
1: आज जो काका एक सवाल करता उसका जुबा बिना हो
0: हां आओ तो बताओ काका जी।
1: हंसता है लेकिन उसका मुंडा नहीं है यानी मुंह नहीं है
0: लेकिन मुंह नहीं है।
1: हां बताओ क्या होता है
0: तो नहीं आता काका जी।
1: लुंडे
2: हाँ काका
1: आए तुम्हारे काका जीत गए क्या तुम भाई गजानंद के आगे जाऊंता हो हमारे से प्रेमता हो
2: काका काका गणे हंसता है फूल हंसता है
1: आज एक बीजा
2: काका फूल हुए
1: आए वेरी गुड डेंगू भाई को बोलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो
2: राम राम सा
0: राम राम लुणी भाई राम राम
2: अब आर खेत में कई काम चले ताके
0: अब तो खेत में निनान काटने लग रहे हैं खुदी
2: ए साग सब्जी की हुए कहीं
0: साग सब्जी तो लुणी भाई चाली पे थोड़ी थोड़ी लेकिन बरसात कौन नहीं चलो
2: गुआर के फली कौन लगी के
0: गुआर के फली पहले गुआर अभी तो लगने लगी पता हो गुआर कौन लगे लुणी भाई
2: हाँ तो गुआर फली थाने वाद कौन लगेगी काके ने तो घनी भवे
0: जोरदार लगे
2: जरूर ला दीजियो और प्रोग्राम कड़ोक लगे
0: प्रोग्राम बहुत ही जोरदार लगे बहुत ही जोरदार
2: हाँ टाबर टोली सब राजी खुशी
0: एकदम आनंद मंगल है मैं सगे भी सुन ला रहे अभी प्रोग्राम सुन ला रहे मैं भी मारो भी नाम लियो
2: ले लो सर
0: हाँ छोटे बड़े डायरेक्टर ताराचंद शर्मा है ममता है मित्तू है किन्नू है मदन लाल शर्मा है मुरारी लाल शर्मा है एक मारो पोते है पंकज श्वासोट है
2: दादा पोता ने आज कहीं सुनावा
0: आज कोई साउंड को गीत सुना दो भाई
2: काका आयो
1: आजा
2: गजानंद भाई जी के बाद रहते सावन को गीत
1: आजा मारी बेजी।

0: काका राम राम
1: जय राम राम जय अभ्रोण्यो बीजो कोके निर्गाव बीजो
0: का रूण है नंदर देपन बोलो
1: आओ हो महेंद्र जी रूण में कोई करो
0: काका बार तो की नहीं करिया बेटा बस
1: आए बेटे बेटा बार ज्ञान बड़ी पी रहा हो समुद्र का नीर सूखे बड़े बड़े दो
0: नहीं यू कहते गरीबी है बार कोई काम है कौन जन बेटा
1: अरे वाह खेतिया कैसी क्यों
0: खेतिया काका जी बरसात गोनी जो थोड़ी मोड़ी है
1: आए हुई करी राम जी घरी और भी जो धानी प्रोग्राम कैसी लागे हो
0: प्रोग्राम काका एक नंबर लगे है पूछो मत है
1: अरे वाह घर में परिवार में सब्जियां नहीं हो
0: सब बढ़िया है काका एकदम
1: अरे वाह आज मोड़ा मोड़ा बोलो खाई बिल नहीं आगा
0: नहीं नहीं मोड़ा को नहीं दौड़ा आ गया फोन लगाता कैसा टाइम होगी जो भी हो
1: भाई गेम फोन लगा थोड़ा मोड़ा हो गया भी नहीं तो आगे नहीं कटी है
2: धके लो आज भाई जी ने
1: धके लो आज तो हाथी के तू
2: हेलो हेलो
0: धोनी भाई जी राम राम
2: राम राम सर राम राम सर भाई जी दिनों दापो ही रखो कहीं हो
0: हाँ दिनों दापो है कोई बकरियां को है बस
2: हाँ बढ़िया सर बकरियां को तो कहीं है बकरियां को दिनों फ्रिज ही रखना कौन पड़े जरूरत कौन पड़े सब ऐसे ना दूर लाओ चाय बनाओ दूध पियो कॉफी बनाओ
0: कने भी दूध दूध सका
2: हाँ ये कौन के भाई भैंस है जकी बात तो टेम उन दुआ है आज कहीं उड़ाला
0: आज कोई तेज जी रोट होना है तो बन गवा को
3: काका बगल लगू
1: राम जी थारी लांबी उम्र करे आप रोज नाव बीजो को किनीर गांव बीजो
3: मंजू गोड बारानी से बोल रहे
1: आओ हो मंजू भाई बारानी में क्वाई करो
3: के नहीं करा बैठा यहाँ काका
1: ए बेटा बेटा बार ज्ञान बड़ी मारी बेटा की पढ़ावड़ी लिखावड़ी करी कौन करी थे
3: बारी तो पढ़ी पर छोड़ दी
1: ओले भाई छोड़ी क्यों तो मैं की परिवेट बारम बर्थडे बाजी पढ़ ले
3: ए छोड़ दियो
1: आई नहीं बेटा धारी आगे हो गए अब तू आगे पढ़ी जी हो और बेटा बेटा शोक लागे
3: नहीं जोरदार लागे फोन खनारी करू लागे फोन
1: ओ लागे बजाय दावड़ी उगी ए भाई आ लूनी भाई वो दे ही करो भाई जी ओ
2: कई को काका
1: ए अन्य ओ भाई ने के हेलो
2: हेलो
3: हाँ कई करो लूनी भाई
2: कई करूँ काके ना तई करो ना लाऊ बजे रोज ने दीतवार का दीतवार
3: लानी पड़े
2: तारे बाराणी जमानो केड़ो के मैं पानी धान केड़ा खे
3: धान घणी ताजो है मैं कौन
2: काकड़िया मती रहू ये कहीं
3: हाँ
2: अजू बेला तो हरी हली लागुड़ा है घणी
3: हाँ आज तो हरी है बड़ी कौन
2: अरे मैं तो एक मैं उतई देखी काकड़िया मती रहा घणी उड़ेला
3: हाँ
2: तावड़े में तो खिल जावे छियार माइन मुरझा जावे एड़ो कुड़सो फूल होता है
3: भाई ध्यान कौन लोनी भाई
2: काका थाने ठाया कहीं आओ
1: ए हम क्यों बेटे तुमने पूछे तुम भी जाओ
2: काका
1: आप
2: बस दो बात को ताका नहीं परिया पड़ियो तालो छत्तो हुए
1: अच्छा अरे छत्तो हुए भाई
3: हाँ छत्तो हुए
1: ए भाई को पूछो प्रोग्राम में कहीं पूछा
2: मंजू भाई आज कहीं होने ला
3: तेजे जी मराज वजन होना दो
2: काका आयो
1: आ
2: मंजू भाई के तेजे जालो चलाई दो
1: ए वो अगरबत्ती घऊ जाऊं ना मारी बेटा

0: 지금 게아니 몰라지지 모이네요.
1: 네, 아는 맹글이 가라.
0: 에이, 저는 맹글이 래나 지지 롬지디오 보감 계시오글 하게 토니.
1: 프로그램 부려 라게 가라, 못 부려 라게.
0: 아래 와, 시오와. 에, 가고 엑 수발 그리 우스가 주바 비나오.
1: 아, 그러, 수발 그러.
0: 에이, 아드미 호.
1: 아.
0: 에이, 아드미 호, 뭐, 에이, 루구이네 푸지오, 그, 다리 그랄라로 과이 나오메. 마, 루구이 볼리, 그, 지세 트렌 젤디 에, 오, 지세 트렌 룩디 에, 보도, 꺄, 나, 무야, 우스게 그랄라가. 에 루리 바이요
2: 까이코 까까
0: 에 바이코 नहीं आऊं तो हम जीत गए तुम कहीं के उताओ
2: काका ते जीत सको जन काका मन तो ठाई को बड़न की हरो दे थोड़ो थोड़ो याद आवे
0: ए बताओ तो हरे दे लगाओ
2: काका चैन होती है चैन जी
0: अरे चैन नहीं होती भाई जीत गए
2: दे बताओ
0: बा घराला नाम कौन लियो बा गियो जिससे ट्रेन जल्दी है आज तो हरी झंडी होगी
2: अच्छा
0: ऐ जिससे ट्रेन रुकती है वो लाल होती है तो हरी लाल हो गया
2: अच्छा हरी लाल जी
0: ऐ भाई को बोले हेलो
2: भाई जी हेलो
1: हेलो लोनी भाई राम राम
2: राम राम सा राम राम सा भाई जी यो
1: आओ
2: अरे ताजो ताजो कपड़ो अट लाओ कने मैं काकी रा बे आगे हाव आवे जन मेर काकी हिडावा कपड़ा
1: लावा लावा घणो लावा
2: अब बार नई नई फैशन को लाई जियो
1: ओ
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे
1: प्रोग्राम बहुत मस्त लगे लोनी भाई मारे एक भाई है थाऊ बात करनो चावे लो करो
2: कराई दो
3: हेलो
2: राम राम सा भाई जी
3: राम राम सा
2: आपरो नाम बताओ
3: जय
2: किशन जी था दोनों भाई भाई में हमती केड़ी के हो
3: ठीक है
2: मोड़ा की कर बोलिया थोड़ी है कहीं
3: थोड़ी कौन नहीं गणी है
2: एकदम गाड़ी
3: ओ
2: जन बताओ आज दोनों कहीं होने ला
1: भजन सुना दो भजन
0: भाई कहीं के उठा भाई
2: दोनों भाई क्या मारा आपस में प्रेम गणो ये मैं तो भजन होना
0: तो जाओ तुम्हारी बेटा
2: ओ लो

0: हेलो काको जी, राम राम सा।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, ओ प्रोन्याओ भिजो को किनीर गांव भिजो।
0: गांव मारो नौकड़ो है काको जी, जिलो मारो बाड़ में रहे, राम राम सा।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, और भिजो मेर मई हंग क्या नियो।
0: सब आनंद मंगल में बढ़िया है सा।
1: ए जन फोगा कैसो लोगे ओ।
0: प्रभु राम बढ़िया लागे है सा।
1: ए और भी जो घर में परिवार में मैंने बाहर में हैं क्या नहीं हो।
0: सब राजी खुशी आशा, आपने सभी पूरे परिवार वाला रम समा दे।
1: ए मोनिया शाह, और काको बात के दे, हम जो काग नहीं हम जो का।
0: मैं तो काको जी बताओ जना ठापड़ी।
1: ए घर के अंदर कोई नशा तो नहीं करता है?
0: ना जी, नशा तो नहीं करे, दो कप चाय पिए, बाकी तो नशो कहीं नहीं।
1: अरे वाह वाह, जीव शोर हो गयो लुनके।
2: काको काका।
1: ए भाई के हमारे परिवार में कोई नशा नहीं करता, तुम भाई को बोलो हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ लोनी बहन, राम राम।
2: राम सा भाजी हो?
0: हाँ जी।
2: प्रोग्राम थे एक लाई हुनो, परिवार वाला पड़ोस वाला हुने हो?
0: परिवार वाला हुनो सा, पड़ोस तो कभी आवे मौके तो वही हुने।
2: अगला ने अकरो लगे?
0: पड़ोस को लगे।
2: आपनी बोली राजस्थान री मिट्टी है, जिके अकरो लगे हो?
0: अरे लोनी भाई सा, सही है आपरी बात, आप ठीक हो?
2: मैं तो रेडी रेटा, थारी बोली हाची मीठी लगी मान।
0: वे तो खावे नहीं, वे तो खावे नहीं।
2: कहीं वे माथे में जू हुए कहीं हो?
0: अच्छा जू हुए।
2: काका।
1: आ बिजा।
2: काका हूँ सही लगे काका।
1: अरे जोरा तो काके के हाँ करे हूँ जी ही की तो।
2: भाई जी आज कहीं?
0: आज तो वो है नहीं, गाजियो गाजियो जेठ हड़ताल कावर तेजा रे लगतड़ो गाजियो सावण भादवो।
2: अबे देखो काका, भादो लागण वाला है, कद गाजेलो अटकन जान दो।
1: ए ओ देख ली तू, जाऊं ती गजन जुग जी, जाऊं ती तू।

0: है मारी भैया ओ जो भयंगी बोयंगी शिव की बजन का बोगाम।
1: हेलो गोरबन।
0: ए बोगामी कोई भाई घी जे बजने होना चाहता है तुम कहीं के उठा हो
1: काका दी तो आर के दिन 12 बजे ले प्रार 1 बजे तक नागौर आकाशवाणी फोन करना है।
0: आज फोन करना नंबर बजो मारे भैया
1: नंबर है काका मिंडी 158 दुओ
0: है
1: दुओ चको मिंडी 168
0: अब ये भैया का फोन सुमे की गोमी में लेनी सीखे तो वो तुम्हारे काका को हाका करेंगे तुम कहीं करोगा।
1: काका मैं बाप भैया का नाम बोल दूं भाई जी पाचा राजी उजे अगले संडे का फोन लगावेला।
0: ऐ जो नाम बजो मारी बेटा
1: ए काका शरण भाई प्रजापते गोगड़ा हूँ कृष्ण कुमार है काकड़ा हूँ सुनीता सरिता भाई बोड़वा हूँ धर्माराम जी गोदारा शीतला माता मंदिर के पास नागौरूं काका
0: एने के नो अगले दीदवार का फोन गिड़गिड़े जो।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लूणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाई
1: काइको काका
0: अब बताओ आज के बोगा में तकनीकी हयो किसका है।
1: है जितेंद्र कुमार राजा राम गेदर।
0: आज के बोगाम के बजदूत गीता
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगो मारे भैया
1: स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरबन
0: होते ही रहो तब आप रेखो के नीर होगी
1: लुणकी ने दिराओ सीख और करते हैं
0: रम रम श्याई।

अभी आप लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के अंदर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें। तो एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

0: अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरएसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद

0: आने की कोई आवश्यकता नहीं है। फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नित्य गीत की द्वारा, इसके वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को AI और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर

0: कार्यकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने

0: आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, रात्रि के 9 बजे हैं और आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

गुलाम अली की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। FM 103.7 MHz पर आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। श्रोताओं, रात्रि के 9:15 में हैं, आए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना। इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

थी और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सायरा बानो की माताजी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: उस जमाने के रोमांटिक हीरो विश्वजीत के साथ भी उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अप्रैल फूल।
1: उनकी पहली नजर क्या असर कर गई।

1966 में ही आई थी ये जिंदगी कितनी हसीन है।

इसका कोई नहीं है, इस दिल को प्यार करे।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेगी।

0: मैं दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे और हमारे प्रसारण की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में आपसे 8:51 पर पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।